नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं, कितने ही श्रृंगार करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस श्रृंगार के बारे में सोचा है जो आत्मा की शोभा बढ़ा दे? कबीर साहब आज ऐसे तिलक की बात कर रहे हैं जिसे लगाने के बाद तीनों लोकों में आपकी शोभा बढ़ जाती है। आज का दोहा सुमिरन के गौरव का उत्सव है। श्रोताओं, कबीर आज भक्ति को एक आभूषण के रूप में देख रहे हैं। वे बता रहे हैं कि राम का नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य अलंकार है। तत् तिलक तिहुं लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तत् तिलक तिहुं लोक में राम नाम निज सार, तत् तिलक तिहुं लोक में राम नाम निज सार, जन

श्रोताओं, इस दोहे का सौंदर्य अद्भुत है। कबीर कहते हैं, तत तिलक तिहु लोक में, यानी यह जो तत्व का तिलक है उसकी चमक केवल इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि तीनों लोकों में है। और वह तत्व क्या है? राम नाम निजसार, परमात्मा का नाम ही वह असली तत्व है, वही जीवन का निचोड़ और सार है। कबीर आगे कहते हैं, जन कबीर मस्तक दिया, जब कबीर ने इस राम नाम रूपी तिलक को अपने मस्तक पर धारण किया, यानी अपनी बुद्धि और अपने विचारों को उस परमात्मा में समर्पित कर दिया, तो क्या हुआ? शोभा अधिक अपार, उनके जीवन की, उनके व्यक्तित्व की शोभा इतनी बढ़ गई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दर्शन की दृष्टि से देखें तो मस्तक पर तिलक लगाना स्मृति और सजगता का प्रतीक है। जब राम का नाम हमारी स्मृति में, हमारे मस्तक में बस जाता है, तो हमारा पूरा जीवन प्रकाशित हो उठता है। यह वह सौभाग्य है जिसे पाने के बाद संसार की सारी चमक फीकी लगने लगती है। कबीर यहाँ सिखा रहे हैं कि असली सौंदर्य चेहरे का नहीं बल्कि उस नाम का है जो आपके भीतर गूंजता है। जो उस तिलक को लगा लेता है वह जगत में अनमोल हो जाता है। दोस्तों, हम रोज आईने के सामने सजते हैं, सवरते हैं। आज जरा सोचिए, क्या आपने वह नाम का तिलक लगाया है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती? आज सुमिरन को अपना श्रृंगार बनाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कितनी अपार शोभा आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। इसके ऊपर हमने चिंतन किया, विश्व स्वधर्म और सूर्य क्या है ये भी देखा, और ये सब होने के बाद जो जे वांछील तो ते लाहो, हर एक की इच्छा अगर पूरी होनी है तो इच्छा अच्छी कैसी है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि ये टर्निंग पॉइंट है, या एक एपिसोड पूरा होने के बाद दूसरा एपिसोड शुरू होता है, क्योंकि ये प्रीफेस है। सतयुग का जो रोड मैप मैंने कहा था कि माउली के दिमाग में या मन में या विजन में होगा, सतयुग कैसे आएगा, या स्वर्ग जिसको कहते हैं, या पृथ्वी पे इसी धरती पे सुख शांति के दिन कैसे आएंगे, ये जो विजन उनका था उसके लिए प्री कंडीशन है कि विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो, फिर जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। जब ये होता है तो क्या होगा, तो बाकी जो अभी ओवी है, बाकी जो लाइनर्स है, तो मुझे लगता है ये वर्णन जो है वो स्वर्ग का भी है, और स्वर्ग लाने के लिए जो निमित्त है, जो कारण है, और जिन्होंने लाने हैं उनका भी वर्णन है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अगली लाइन जो है तो ये है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता। वर्षत सकल मंगली, वर्षत मीन्स वर्षा, शॉवर, जैसे बारिश होती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो जो गर्मी है, तपत है धरती की, वो ठंडी हो जाती है, और ठंडा ठंडक जो है बहुत अच्छी लगती है दिल को। अभी जो हम कहते हैं कलयुग में हमारे जो मन है, शरीर तो तपता ही है, वो गर्मी का मौसम रहता है तो शरीर तपता है, धरती तपती है, और बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, और हर कोई बारिश के लिए राह देखता है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं ना बारिश के लिए राह, कब आएगा, क्या होगा, बारिश कब आएगी, हर एक का प्रेडिक्शन कुछ रहता है, उसके लिए बहुत सारी तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वैसे अभी ये कलयुग के अंत में सबके मन भी तप गए हैं, पक गए हैं, और कहीं ना कहीं शांति की, शीतलता की बारिश अगर होगी तो मन को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वर्षत सकल मंगली, और कैसे है, ऐसे लोग आने चाहिए कि जिनकी वर्षा जो है, वर्षा एक्चुअली उपमा दी है, वर्षत सकल मंगली, मंगल, वर्षत सकल मंगली, इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो हमेशा अच्छे विचारों की, सद्भावना की, या सत्संकल्पों की बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। ये कैसी हो सकती है वर्षा, वर्षत सकल मंगली, और सकल मीन्स हमेशा। इसके ऊपर से मुझे याद आया कि मंगल जो है, मंगल ग्रह बोलते हैं ना, मंगल, और मंगल हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं, मंगल मुहूर्त, मुहूर्त जो है वो भी बोलते हैं मंगल, हर कुशल मंगल बोलते हैं, किसी का अगर कुशल मंगल है ना, सब पवित्र या अच्छा। लेकिन यही मंगल अगर हमारे जन्मपत्री में आ जाता है तो क्या होता है, यही मंगल जन्मपत्री में आ जाता है तो कभी कभी वो अमंगल हो जाता है। अभी जो लड़की के पिता है और किसी लड़की के जन्मपत्री में, या लड़के के भी जन्मपत्री में मंगल है, तो कितनी तकलीफ होती है ये बोलने की जरूरत नहीं है, जो अनुभवी है सब जानते हैं। तो ये मंगल जो है, कभी मंगल है कभी अमंगल है, मंगल वही है,
लेकिन हमारे लिए कभी वो अमंगल होता है कभी मंगल होता है। लेकिन माउली जो बोलती है वर्षत सकल मंगली, हमेशा के लिए मंगल, कभी भी अमंगल नहीं है। और ऐसी वर्षा होनी चाहिए, मीन्स हम जब भी कोई भी जो अच्छे लोग हैं जिनको हम संत कहते हैं फरिश्ते कहते हैं, वो कैसे होंगे? हमेशा वर्षा करेंगे अच्छे विचारों की, सद्भावना की, सत विचारों की, सत संकल्पों की वर्षा करेंगे। और जो कोई उनके सामने आएगा उसे आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस। और गुड विशेस और संकल्प जो है या आशीर्वाद जो है उसका हमारे जिंदगी में बहुत महत्व है। कभी भी कुछ भी प्रसंग होता है, शादी ब्याह होते हैं या किसी का बर्थडे होता है, तो हम हमेशा गुड विशेस देते हैं। क्यों देते हैं गुड विशेस? संकल्प। हम अगर हमेशा शुभ चिंतन करते हैं, दीपावली में किसी सबको ग्रीटिंग देते हैं, दीपावली शुभ चिंतन, कोई भी त्योहार है तो उसके लिए शुभ चिंतन करते हैं, तो ये शुभ चिंतन हम कभी कभी करते हैं, त्योहारों के निमित्त करते हैं या कोई स्पेशल पर्पस है तो करते हैं, सकल मंगली नहीं, वर्षत सकल मंगली। तो माउली जो है, ज्ञानदेव जो है, वो देखते हैं कि ऐसे लोग हमेशा होने चाहिए कि जो हमेशा के लिए सकल मंगली, हमेशा के लिए सुमंगल का चिंतन करेंगे, सुमंगल चिंतन करेंगे, उनका चिंतन हमेशा मंगल होगा और वो सबको पौछार करेंगे। ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। मांदियाळी, मांदियाळी मीन्स क्या है? बहुत बड़ा समुदाय है, ऐसे नहीं कि एक दो आदमी आएंगे और एक दो फरिश्ते होंगे, संत होंगे और वो शुभ चिंतन करेंगे, नहीं, बड़ा समुदाय होगा। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मांदियाळी मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा संकल्प करेंगे तो क्या होगा? वातावरण में बदलाव आएगा। और ये वातावरण में बदलाव आएगा तो इसलिए उन्होंने उपमा दी है मांदियाळी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। और वो मांदियाळी क्या है? जिनकी निष्ठा ईश्वर के पास है। निष्ठा, निष्ठा मीन्स सिर्फ विश्वास नहीं है, निष्ठा मीन्स एक होता है किसी भी परिस्थिति आने दो विश्वास अटूट रहता है, और इसलिए उसे निष्ठा बोलते हैं, ईश्वर निष्ठ, ईश्वर में जिनकी निष्ठा है ऐसे। और दूसरा भी निष्ठा भी बोलते हैं, निष्ठा मीन्स ध्यान, ईश्वर का ध्यान जो करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? हमेशा ईश्वर का चिंतन करेंगे। और जब मन में राम रहता है तब कभी हराम होता नहीं है और जिंदगी में आराम भी आ जाता है। अगर मुझे जिंदगी में आराम आना चाहिए तो मन में राम होना चाहिए। और ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, हमेशा चिंतन उनका ईश्वर के बारे में होगा तो मन में कोई बुरे संकल्प आएंगे ही नहीं। और इसलिए माउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता। इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो ये रिकैप अगर करेंगे तो क्या होगा? जैसे दुरितान से तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाओ, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। ये होने के बाद अभी कैसी कैसी कंडीशन आनी चाहिए, ये जो माउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता, इसके ऊपर अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को अब एक नए अंदाज से देख रहे हैं। खुशी यानी कि कंटेंटमेंट यानी कि स्टेबिलिटी। और अब अगर हमने उन फैक्टर्स को देखना शुरू किया है जो हमारे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को अनस्टेबल या ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम अभी तक नेचुरल मान रहे थे और ऐसा लगता था कि इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि पावर मेरे अपने हाथ में है। एक्चुअली एनी टाइम द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरी इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मुझसे या मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो मैं अब कर सकता हूँ। जैसे ही मुश्किल सामने आती है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हमने पास्ट को देखा सिस्टर शिवानी, अमेजिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड एक्चुअली इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स इसकी पास्ट। और एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया कर कि मैं कहीं थी और 2 घंटे के लिए ड्राइव, क्योंकि हमारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आई रियलाइज कि हम जो भी बात कर रहे थे या तो वो सचमुच पास्ट से जुड़ा हुआ था, उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको देख रहे थे, या कुछ ना कुछ हम फ्यूचर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो कि हाउ इट विल बी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने उनसे भी कहा कि लेट्स ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, एंड वी बिकेम साइलेंट।
1: There was nothing to talk about.
0: You know, because present में आते ही traffic दिख रहा था फिर सामने। So actually, how to be in real, really in present? उस पे बात थोड़ा सा करना चाहूँगी।
1: It is very important when we are saying being in the present, कि present moment में my state of mind क्या है? होता क्या है कि जैसे ही हम past या future के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते हैं फिर discuss करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी state of mind fluctuate होने लगती है। पास्ट की अगर कोई अनप्लेजेंट के बारे में सोचा तो हर्ट आएगी बात में, एंगर भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म होने लगेगी, सो वी गो लाइक दिस। फ्यूचर आएगा तो एंटिसिपेट करेंगे कि ये होगा, खुश होंगे, फिर फियर आएगा कि हो सकता है नहीं हो। तो ये बहुत सारी जो अनस्टेबल कर देती हमें, ये सारी इमोशंस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती हैं। Being in the present moment, it doesn't mean you can't talk about the future. कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल सारा दिन में हमें क्या करना है, लेकिन ये ध्यान मन की स्थिति, I am happy now. See, when we talk about the future, we say ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा, you know, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत खुशी होगी, और अभी ऐसे ऐसे जा रहे। You can plan what you want to do for tomorrow, but right now checking कि happiness उस पर dependent नहीं है, happy तो मैं already
0: हूँ,
1: अभी हूँ, not conditioning your mind program, हमें पता ही नहीं चलता, हम unaware हैं कि हम अपने mind को condition करते जाते, जब ये होगा ना तो तुम खुश होगे, जब ये होगा तो तुम खुश, तो वो mind program कर लेता है और वो wait करता है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, और फिर वो dependency, फिर वो fear, ये सब आता। तो important है mind की stability को अभी देखते रहे, yes this will happen but my happiness is not dependent.
0: I think to somewhere what we need to do is that see meri abhi present mein meri situation kya hai, you know, meri mental state kya hai, phir main past ko bhi analyze kar sakti hu aur future ke bare mein bhi anticipate ya jo planning hai wo ki ja sakti hai, you know.
1: Lekin jab bhi wo sab kuch kar rahe hain, keeping the focus on my state of being, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है, सपोज हम पास्ट में भी किसी हर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई हर्ट, तो जस्टिफाई करने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी, यू नो, मुझे लगता है आई एम राइट जब मैं जस्टिफाई करती हूँ, बट आई वॉन्ट बी हैप्पी बाय दैट, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी स्टेबल, एंड वंस आई डू दैट I will not blame anyone for the hurt. Right now, my mind is still blaming other people for the hurt. And that's why I want to talk about it. I want to discuss it. The day I'm able to tell myself ki nahin, main theek hu, main stable hu, mujhe zarurat nahin lagegi. Kyunki main unko ab zimmewar nahin thehraungi apne dard ke liye. Mujhe ye pata hai ki ye maine kiya, maine create kiya, mujhe finish karna hai. So then I will be very stable. See, discuss karna, lekin uska result kya? हम डिस्कस करते हैं सो दैट वील फील बेटर, चलो मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। तो बात करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बात करूंगी कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर आप ऊपर से बोलेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए
0: अच्छा,
1: था
0: तो
1: उनको
0: लेकिन
1: आपके
0: वो
1: साथ।
0: दो जने जब हो तो और 2 घंटे हमने दिखाने तो बात क्या करें फिर?
1: अगर आपको पास्ट की कोई बात से सीखना भी है और आप 2 जने बात कर रहे हैं, wouldn't it be nice to discuss that what I went through when I went through this incident, maine kya learn kiya, how did I grow and how I am growing.
0: That's what I did, you know.
1: Yeah, that's okay.
0: That's what I'm saying.
1: See, that as long as pura focus apni personal internal growth ke upar hai, to usse kya hoga, aap empowered hote jayenge. एंड आपकी जो वो डिस्कशन होगी, अगर दो लोगों के साथ है, आपकी डिस्कशन दूसरे के लिए भी एम्पावरिंग है. कई बार हमें रियलाइज ही नहीं होता कि जब हम एक दूसरे को फोन करके या एक दूसरे से बात करते हुए घंटों घंटों उनको अपनी वो वाली कहानियां सुनाते रहते हैं जहां लोगों ने हमें धोखा दिया, अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड समटाइम्स. एंड हम क्या कर रहे हैं, अपना दर्द अपना वो सारा हम दूसरे को भी दे रहे हैं. पहले ही सामने वाले के पास अपना शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है. सो शेयरिंग एंड डिस्कसिंग हर्ट एंड पेन डजंट क्रिएट एनी
0: एक्चुअली क्रिबिंग.
1: क्योंकि फिर क्या होता है, वो हर्ट डिस्कस करते करते हम अभी पेन में चले जाते हैं. दैट इज व्हेन हमने पास्ट का इमोशन प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड किया, फिर आज डिस्कस किया तो वो और पक्का हो गया, फिर इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे वो और पक्का होता जाएगा. एंड देन माई एवरी डे इज इन hurt. It's not just yesterday, but it's today, then it's tomorrow, and it's every day. That's where it becomes very damaging. Because then, वो मेरा एक दर्द में रहने का ही संस्कार बनता जा रहा
0: है. So somewhere that is needed to be checked. So वो हम check करने लग गए हैं. और wonderful, the way it is coming out कि जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें realization होता है कि हम कर क्या रहे थे.
1: किसी आपने देखा तब आपको रियलाइज हुआ. अभी तक तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हम कितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं.
0: अनदर फैक्टर व्हिच एक्चुअली आई विल से नाउ आई एम वेरी केयरफुल व्हाट आई एम गोना से इज दैट आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस. आई एम नॉट सेइंग इट टेक्स अवे माय हैप्पीनेस. इज दैट आई गेट सो स्ट्रेस्ड आउट. एंड लाइक वी आर ऑल लिविंग इन दिस एरिया, मतलब जो हमारा काम का या जिंदगी का हर रोज का, मतलब घर तक पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक में 2 घंटे आपको लगते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो आपको चीजें वहां पे होनी है या करवानी है, सो स्ट्रेस्ड आउट एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट इज टू बी डन अबाउट दैट.
1: उसके भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको पहले चेक करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप वी विल बी एबल टू फ्री फ्रॉम दैट. कि पहली बात तो स्ट्रेस शब्द को ही देखें तो इट्स अ वेरी न्यू वर्ड इन द वोकैबुलरी. आई थिंक अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो हमारी वोकैबुलरी में ये कोई वर्ड नहीं था, स्ट्रेस वर्ड नहीं था. हम कहते थे चिंता, हम कहते थे टेंशन, लेकिन अभी तो स्ट्रेस मतलब वी आर जस्ट टेलिंग आवर सेल्फ कि हम एक स्टेप हायर होते जा रहे हैं. और ये आज हम सिर्फ कॉरपोरेट और इस सर्कल में नहीं लेकिन स्टूडेंट्स भी इस वर्ड को यूज करते हैं. जिस एज ग्रुप को हम कहते थे बेस्ट लाइफ, यू नो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ एंड that's become
0: most
1: one
0: difficult.
1: Of the most difficult.
0: Most difficult. I didn't say worst, but yes, one of the most difficult because I'm seeing children going through so much of again stress, and it's just a thought process, you know. अपने ही thought process को ऐसे create करते हुए. Another thing which I want to ask Sister Shivani is that is it the stress we are creating, or is it like you know ऐसे ऐसे situations जो आती जाती हैं और हमने अपने आप को कंपटीशन में डाल दिया है. मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ या आप?
1: ये एक स्टेटस सिंबल है आज पे. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, दैट मींस तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं.
0: क्योंकि अगर उनको क्या फर्क पड़ता है?
1: अगर कोई कुछ कर रहा है, इफ समवन इज इन द रेस एंड वो कॉम्पिटिशन में है, उसको स्ट्रेस तो होना ही होना है. एंड दैट इज वाई द डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम जो है वो है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है,
0: ये तो होना ही चाहिए. आई एम से लाइक मेरा बच्चा तो आई एम से देयर वाज वन मदर हु सेड शी इज नॉट इवन बॉदर्ड, शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड आउट.
1: सी शी इज नॉट इवन कंसर्नड एंड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड. ये दो अलग सेंटेंसेस हो गए. एक है कि आप केयरलेस हैं, आपके एग्जाम है, आप पढ़ नहीं रहे, आप केयरलेस हैं. लेकिन एक है आप स्ट्रेस्ड हैं. हम दोनों चीजों को सेम कैसे बोल सकते हैं?
0: लेकिन हम दोनों चीजों को एक ही मानने लग गए हैं.
1: अभी एक है कि मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं रही, दिस इज केयरलेसनेस. तो कोई कहे कि यू आर नॉट कंसर्नड या यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडीज. लेकिन एक है कि मुझे इतना ज्यादा वो दर्द ने घेर लिया है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है. अगर मेरा नंबर ठीक नहीं आया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. ये जो एक होल विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो हमें पकड़ लेता है तो हम पढ़ने भी अगर बैठते तो हमसे पढ़ाई नहीं होती, और तब हम कहेंगे कि आई एम अंडर स्ट्रेस। एंड तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते भी हैं लेकिन इट डजंट रियली गो इन, क्योंकि माइंड तो मन नहीं तो पढ़ना बैठ के, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू सिट एंड स्टडी, लेकिन वो मन तो इस साइकिल ऑफ थॉट्स में चला गया है, तो वो उसमें कैसे जाएगा। और फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इट डजंट रियली हैपन दैट वे।
0: एंड देन वी से कि हमने इतना काम किया था, इतना किया था और
1: क्योंकि कितनी बार हम स्कूल में कहा करते थे कि मुझे सब कुछ आता था, यू नो आज मुझे एग्जाम में सब कुछ आता था, लेकिन मेरे से ये केयरलेस मिस्टेक हो गई। तो केयरलेस मिस्टेक यूज टू बी अ वेरी कॉमन वर्ड, कि और वो केयरलेस मिस्टेक बाद में ऐसे लगती है कि इतना ईजी था। एंड यू समटाइम्स हैव टू आस्क योर सेल्फ हाउ कुड आई मेक दिस मिस्टेक, मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर दिए और उसमें इतनी छोटी बात पर मैं कैसे ये गलती कर सकती हूँ। But that itself is a sign कि mind alert नहीं था, तो mind ने 2+2=4 लिखने की जगह 2+2=6 लिख दिया। मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे याद नहीं, यू नो कोई चीजें होती है मुझे याद नहीं आ रही उस टाइम मैंने पढ़ा था, लेकिन ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी उस टाइम पता नहीं कैसे लिख दिया। दिस इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि माइंड पे वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस है। तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि यू नो टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू, इनफैक्ट यू शुडंट बी अंडर स्ट्रेस, बट यू हैव टू बी इनफैक्ट वेरी वेरी काम। आजकल तो सिखाया जाता है कि एग्जाम से एक दिन पहले बी रिलैक्स्ड, बी काम, क्योंकि जितना आपने किया है इट्स इम्पोर्टेंट कि वो आप बेस्ट देकर आए, बजाय कि आप इतना अपसेट हो जाएं कि जितना किया है। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम भी हम ही तो बच्चों के अंदर डालते हैं। यू नो अगर बच्चा आराम से है, आराम से पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स कहेंगे टेंशन नहीं है तुमको, कल एग्जाम है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत टेंशन हुई हुई है। हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू अस। इट इज नॉट कि एग्जाम डिफिकल्ट है, यू नो हम क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, या सिलेबस बहुत है। इट्स नॉट दैट, आई थिंक हमने इससे ज्यादा सिलेबस किए हुए हैं, लेकिन अभी है कॉम्पिटिशन है। लेकिन जैसे ही मैं वो कॉम्पिटिशन को एंटिसिपेट करती, मैं साथ साथ एंटिसिपेट करती इनसिक्योरिटी ऑफ इफ आई डू नॉट पास इन दैट कॉम्पिटिशन, तो मैंने तुरंत क्या क्रिएट कर लिया, फियर। फियर जैसे ही क्रिएट किया, दैट इज स्ट्रेस। फियर कोई एग्जाम देने का नहीं होता है, नो वन इज स्केयर्ड ऑफ गिविंग एग्जाम, मुझे जितना आता है आई विल गिव माय बेस्ट। फियर किस चीज का है,
0: पता नहीं जब रिजल्ट आएगा तो विल आई बी एबल टू डू,
1: अगर मैंने उतना अच्छा, सी दैट इज व्हाई वी से कि फ्यूचर में रहना क्यों इतना डैमेजिंग है। अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं तो आप सिर्फ अभी के पढ़ने पर फोकस करेंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट हो सकता। स्ट्रेस कौन सी थॉट से क्रिएट हो रहा है, अगर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मुझे अगर नई एडमिशन मिला, मेरा करियर, यू नो ऑल दोस थॉट्स, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा। तो ये जो प्रेजेंट में रहने की आदत है, इसको अगर हम नेचुरल करते जाते, ये हमें हर एस्पेक्ट पे मदद करती है। जैसे कल आपने कहा यू वर जस्ट ड्राइविंग, तो मे बी दैट टाइम इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट अगर आप एक प्रोजेक्ट के बीच में हैं, आप एक डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, या जैसे आपका इस तरह से एग्जाम है, कोई ऐसी चीज होती ना, अगर हमारे मन को प्रैक्टिस नहीं होती है तो उस टाइम हम काम करने की बजाय हम ज्यादा वो फ्यूचर और फ्यूचर का फेलियर ऑलरेडी देखकर वो फियर अभी क्रिएट कर देते हैं।
0: कितनी बार हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो पढ़ के हम मतलब पेज के पेज पलट जाते हैं, पूरा का पूरा पेज पढ़ जाते हैं, हमें एक भी शब्द अंदर नहीं जाता।
1: दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड, के मन कुछ एक चीज करते हुए भी मन कुछ और सोच रहा है, क्योंकि मन को प्रेजेंट में लाने की आदत नहीं है। इसी तरह बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है बच्चों की, दैट इज कंसंट्रेशन। एंड देन दे वांट टू आस्क द एल्डर्स कंसंट्रेट कैसे करें, इट्स नॉट कंसंट्रेट कैसे करें कोई टेक्निक नहीं है, हमें किसी ने नहीं सिखाया कंसंट्रेट कैसे करना है. इट इज जस्ट दैट राइट थॉट्स कैसे क्रिएट करें. एंड वो राइट थॉट्स फिर सिर्फ पढ़ने के टाइम आप नहीं सीख पाएंगे. यू नो हम क्या करते, पूरा साल तो कोई भी थॉट्स चल रहे कैसे अभी चल
0: बोलते हैं कि बैठो 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ.
1: इट वोंट हैपन.
0: प्रैक्टिस नहीं की हुई जब तक.
1: अब अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम हम 5 मिनट साइलेंस में बैठे तो कौन सी थॉट्स क्रिएट होंगे? वो साइलेंस में बैठते ही तो और सारी वो फियर वाले
0: तो डरने लगते हो और भी डर रहे होते हो.
1: यस, इट वोंट हैपन दैट टाइम. एंड दैट इज व्हाई ये जो हम आर्ट ऑफ थिंकिंग कि किस तरह की थॉट्स क्रिएट करने हैं, ये अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते आए हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रेस क्रिएट करें फिर स्ट्रेस को कैसे फिनिश करें, लेकिन स्ट्रेस क्रिएट होगा ही नहीं. ये स्ट्रेस का क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण है ये फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इस तरह से. एंड उसमें भी जैसे एंटिसिपेट करते फेलियर को अगर देख लेते और वो हमारा अभी फियर क्रिएट कर, और जब इतना फियर यहाँ क्रिएट हो जाता तो हाउ विल यू फील? अब आप उसको वर्ड स्ट्रेस दे दो, बट बी सो कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स इट मेक्स मी फील एब्सोल्युटली लो. एंड फिर वो लो फीलिंग के साथ आप प्रोजेक्ट करने बैठो या पढ़ने बैठो, हाउ कैन यू डू वेल? इट्स नॉट पॉसिबल. तो स्ट्रेस से लेकर कई एक बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको अगर हम चेक करें और चेंज करें और फिर कल चलें अपने जीवन की यात्रा में, आधा काम तो वहीं हो जाएगा. क्योंकि जैसे हमने कहा टेंशन तो नॉर्मल है. यू आई मीन जस्ट आस्क एनीबडी, आप 4 साल के बच्चे से ले लो एंड ऑफकोर्स उस सीनियर एज ग्रुप तक चले जाओ, टेंशन होती है आपको? किसी को टेंशन होती है तो कहेंगे टेंशन तो सबको होती है, ये कौन सा क्वेश्चन है? टेंशन नॉर्मल है, टेंशन नेचुरल है. तो अगर वो नॉर्मल है तो आप उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे?
0: नॉर्मल है तो होती है तो क्या करना है उसे खत्म?
1: नहीं नहीं, तो वो तो फिर नॉर्मल है. यू नो लेट्स से अगर यहाँ मेरे घुटने में दर्द नॉर्मल है मैंने बोल दिया उसको, तो फिर उस जब तक आई हैव अ रियलाइजेशन कि ये कोई चीज है जो अननेचुरल है, ये दर्द है, ये मेरा नेचुरल नहीं है कंफर्ट लेवल, तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए करूँ. लेकिन अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि ये तो नॉर्मल है तो क्या होगा, उसी के साथ चलना शुरू कर देंगे.
0: उसके ऊपर आप बात काम ही नहीं करोगे ना, बाकी सारी चीजों पे काम करते जाओ.
1: आप नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल क्या है इसका बिलीफ बहुत क्लैरिटी से चाहिए होता है. क्योंकि हम कंडीशन्ड हैं कि जो चीज नॉर्मल है मतलब वो ठीक है. जैसे ही हमने किसी चीज को कहा कि ये अननेचुरल है तो हम उसके ऊपर कुछ मेहनत करते. आप घर पहुंचे, आज आपको थोड़ा सा फीवर है तो आपने देखा थर्मामीटर पे 100 है, 101 है, तो आपको मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है. बिकॉज यू नो दैट इट इज नॉलेज. नॉलेज है कि ये जो ट्राइंगल मार्क जहाँ बना है वो ही नॉर्मल है. वो मर्क्यूरी उससे इतना भी ऊपर होगा ना थोड़ा सा, नॉर्मल नहीं है, मुझे बुखार है, आई विल इमिजिएटली टेक मेडिकेशन एंड आई विल गो ऑन टेकिंग माई मेडिसिन आफ्टर एवरी 6 आवर्स टिल दैट मर्क्यूरी कम्स टू दैट नॉर्मल मार्क. उसके बाद अगर मुझे नहीं भी ठीक लग रहा होगा ना, थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है थोड़ा फीवरिश, लेकिन अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर में दिख गया कि ये नॉर्मल है,
0: देन आई विल नॉट टेक द मेडिसिन.
1: देन आई विल नॉट. सी दैट्स व्हाई व्हाट इज नॉर्मल इज सो इम्पोर्टेंट. आई विल टेक मेडिसिन ओनली जब तक मुझे वो पता है कि ये नॉर्मल नहीं है. अब टेंशन के लिए क्यों नहीं मेडिसिन ले रहे? क्योंकि हमने कह दिया ये ही
0: नॉर्मल है. ये तो है, ये तो आज के इस पूरे युग में.
1: तो फिर हम उसको थोड़ी खत्म करने का कोई भी प्रयास करेंगे. इसलिए पहले तो ये बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से शेक करना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. इसको चेक करना पड़ेगा कि टेंशन कुछ भी नहीं है, इट्स अ पेन. ये एक दर्द है जो आता है मुझे बताने के लिए कि मुझे कुछ चेंज करना है.
0: एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा होने लगता है ना तब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तब हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. लेकिन थोड़ा
1: लेकिन तो भी हम उसके सॉल्यूशंस कहाँ ढूंढते हैं?
0: हाँ, वो जिस भी तरह से ढूंढ रहे होते हैं
1: कहाँ ढूंढते हैं कि ये सब ठीक हो जाए. हाँ, तब मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा. यस, दैट्स ऑल्सो वेयर आर वी लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन. तो वी आर लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन परिस्थिति के अंदर कि परिस्थिति ठीक हो जाए, किसी भी तरह परिस्थिति.
0: इस सिचुएशन में आपका ऐसे बिहेव करना तो नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस में आना मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे.
1: तो फिर वही है ना, हमने अगर हम बच्चे को ये समझा सकें कि एग्जाम के टाइम पर रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है. कभी ये कहा कि रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है.
0: आई डोंट रिमेंबर
1: या रिलैक्स्ड ही रहना है बच्चे. नहीं, टेंशन होना तो नॉर्मल है. और खुद ही इतने टेंस्ड होते हैं, खुद के फेस और बॉडी.
0: ये कहते जाते हैं कि आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स
1: वो रिलैक्स रहो भी कैसे कहते हैं. इट इज सो,
0: और वो हम खुद इतने टेंशन में होते हैं.
1: एग्जाम के टाइम पे द होल एनर्जी इन द हाउस इज वेरी डिफरेंट.
0: नोबडी कैन कम, यू नो. उसके राहुल के एग्जाम्स है ना, तो फ्रेंड्स नहीं आ सकते, रिलेटिव्स नहीं आएंगे. इट्स लाइक अमेजिंग द वे वी क्रिएट.
1: तो एक है कि बच्चे को पढ़ना है, उसको साइलेंस चाहिए, एक अलग कमरा आप दे दो, सब कुछ कर दो. लेकिन घर में जितना हो सके वायुमंडल भी हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा. जितना हम नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो बच्चा भी फील करेगा ना कि हाँ सब कुछ नॉर्मल तो है, मैं एक एग्जाम ही तो देने जा रहा हूँ.
0: अंदर से नहीं नॉर्मल होते ना हम,
1: वही ना, अंदर होंगे तो बाहर भी तो ऑटो. लेकिन हमने वो एग्जाम को इतना बड़ा, अब हो क्या रहा है, पहले तो फिर भी साल में एक बार एग्जाम आता था, चलो पूरा साल तो चलता. अब वो एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है.
0: सितंबर में आएंगे पहले फरवरी बोर्ड्स होंगे,
1: फिर वो वीकली कुछ टेस्ट होंगे, ये व्हाटएवर. तो क्योंकि एवरी एग्जाम एंड एवरी टेस्ट इज बिकमिंग लाइक दिस, तो ओवरऑल पूरा साल ही बच्चे का कैसे बीत रहा है, जैसे कि वो एक हाई प्रेशर उसमें यू नो वर्क कर रहा है, वो माइंड के लिए बहुत डैमेजिंग है. वही चाइल्डहुड जो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड हम कहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी स्ट्रेस. सीन इवन विद बच्चे जो प्ले स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, उनको कितना स्ट्रेस है. डू यू थिंक एक 3 साल का बच्चा एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको भी पेरेंट्स, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस में है कि नहीं मिला तो. ये जो फियर क्रिएट हो रहा है वो बच्चे को उस एज से ही हम वो डेवलप कर देते कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम यू आर अ फेलियर.
0: पर अब हम यहाँ पे क्या, पेरेंट अगर देख रहे हैं तो वो ये कहेंगे ब्लेम गेम यहाँ शुरू होगा. स्कूल्स ऐसे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, पूरा माहौल ऐसा हो गया है, उसमें मेरे को तो करना ही पड़ेगा. अगर मैंने नहीं किया तो जिस स्कूल में मैं बच्चे को डालना चाहता हूँ.
1: हमें क्या क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करानी होगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा. सिर्फ हमें एक चीज नहीं करनी होगी, फियर नहीं क्रिएट करना. वी नॉट सेइंग वी नॉट गोइंग टू स्टडी, ऑब्वियसली जो है फिर माहौल, हमें माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता. स्ट्रेस वर्ड को ही अगर हम देखें तो साइंस में स्ट्रेस वर्ड को हम लेते तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रेजिलियंस. तो प्रेशर तो है ही ना बाहर. पहले तो कभी स्कूल में, आई व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई डिडंट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू. वो मेरे पेरेंट्स गए एडमिशन करा के वापस आ गए और कहा, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी, और कहा आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कूल जाना है. आज वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत से गुजरते. तो ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है, हम बैठकर उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते. लेकिन जितना प्रेशर न्यूमरेटर है ना बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर रेजिलियंस, इनर स्ट्रेंथ, उस प्रेशर को फेस करने की मेरी अपनी आंतरिक शक्ति. मेटल शीट्स हैं, इंडस्ट्री में हम जाते हैं अलग अलग मेटल शीट्स हैं, हर मेटल शीट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई किया जाता, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ अलग अलग. तो हम में से भी हर एक की अपनी अपनी एक आंतरिक शक्ति है. प्रेशर हर एक के ऊपर इक्वल है, लेकिन जिसकी जितनी इनर स्ट्रेंथ होगी वो उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएगा. आज क्या हो रहा, प्रेशर तो बढ़ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दे रहे और फियर क्रिएट करते जा रहे, फियर
0: उसको तो वीक करते जा रहे,
1: डिनोमिनेटर घटता जा रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है.
0: स्ट्रेस
1: फैक्टर बढ़ता जा रहा है इतना ज्यादा, एंड न्यूमरेटर इज ऑफकोर्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ना, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से है. लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं रखा, डिनोमिनेटर भी बहुत तीव्र गति से घटता जा रहा, and stress factor is increasing very very fast. Yes, it amazing. Will go beyond our control.
0: We really need to see, you know. और हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने आप को situations के accordingly इसलिए create कर रहे हैं. You know, situations ही ऐसी हैं, तो हम अपने आप को उन्हीं के उसी के according तो तैयार करते जा रहे हैं. वो तैयारी जो बाहरी है, जो चीजें करनी है, वो तो ठीक है. Amazing. We always have to remember this. Stress is equals to pressure upon my inner strength. You know. तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मेरी इनर स्ट्रेंथ पे. तो अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ, प्रेशर को तो हमें, क्योंकि हम बाहर की चीजों को कुछ नहीं कर सकते, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है उसे मैं जितना बढ़ाती जाऊंगी, बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाती जाऊंगी, स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा. इट्स ब्यूटीफुल.
1: एंड स्ट्रेस कम होता जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छे होती जाएगी. हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है. जो स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, वो परफॉर्म नहीं करे अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल.
0: वेरी ट्रू. और हम अपने आप भी देखते आए हैं कि जब हम जितना, अभी तक भी तो बच्चे टेंथ से पहले भी तो बच्चा पढ़ रहा होता था और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा होता था. मतलब बच्चा अपने आप अपनी बहुत सारी चीजें कर रहा था. तो हमें अपने आप को देखना है कि हमने एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट किया है, पूरा जो हमने अपने लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे कितना ज्यादा आगे बढ़ाया है, तो वही तो फिर फ्लो होके बच्चे तक जा रहा है. सिचुएशंस, टीचर, स्कूल, लोग, सब कुछ कहते रहेंगे. वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जाएगा. अगेन, जितना वो बढ़ेगा उतना ही मुझे अपने अंदर के आंतरिक शक्ति को, और मैंने देखा, अमेजिंग, आई नेवर रियलाइज इट, कि जितना वो बढ़ रहा था मैंने न्यूमरेटर को एक्चुअली कम करती गई हूं मैं, क्योंकि वो मैं डरती गई, डरती गई, डरती गई. तो मुझे ना डरते हुए अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है. यू नो, इट्स एक्चुअली सो इजी इफ यू लुक एट इट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं समझा था. थैंक यू सिस्टर शिवानी. लाइक आज हम एक फैक्टर पर बात कर पाए, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव हिट. तो इस पर आप जरूर सोचें. और यू नो, अभी तक का जो बिलीव सिस्टम्स पर हम जी रहे थे कि जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैंने अपने आप को उसी हिसाब से तो मोल्ड किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी चीजें करनी ही पड़ेंगी. करना और किस स्थिति में मैं करूँगा, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे. पढ़ाना भी है आपको बच्चों को, आपको सब कुछ करना है, तैयारी भी करानी है, बट किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस स्टेज में रहकर कराना है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए राजयोग में हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं. इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो अगर कोई मन में बात उठती है, कोई सवाल उठ रहा है, स्ट्रेस से जुड़े हुए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका स्वागत. आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. स्ट्रेस से जुड़ा एक बिलीफ सिस्टम कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, इसको आज हम बहुत अच्छे

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM.
1: श्रोताओ नमस्कार, आज के विशेष प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है. श्रोताओ, आज के कार्यक्रम की विभूति है पंडित उन्मेष बैनर्जी, जिनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूंगा. उन्मेष बैनर्जी अपनी पीढ़ी के प्रभावशाली तबला वादकों में एक महत्वपूर्ण नाम है. उनका संबंध एक ऐसे परिवार से है जहाँ उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. आपके पिता और गुरु पंडित सुनील बैनर्जी प्रतिष्ठित तबला वादक तथा आचार्य पंडित शंकर घोष के वरिष्ठ शिष्यों में से एक रहे हैं. इनकी माता श्रीमती भारती नानावती बैनर्जी प्रसिद्ध पटियाला घराने के उस्ताद मुनव्वर अली खान की शिष्या और बहुमुखी गायिका है. उनके नाना श्री हरदेव नानावती संगीतकार और समाजसेवी थे. उन्मेष जी का तबले से जुड़ाव बेहद कम उम्र में शुरू हुआ और एक वर्ष की उम्र में तबले के प्रति उनका आकर्षण दिखाई देने लगा और 6 वर्ष की उम्र में आपने अपनी माता के साथ मंच पर पहली सार्वजनिक प्रस्तुति की. आपने अपने पिता पंडित सुनील बैनर्जी के बाज की गहन तालीम प्राप्त की. इसके साथ ही आपने मृदंगम में विद्वान एस के शेखर से कर्नाटक संगीत की लय परंपरा का अध्ययन किया और आचार्य पंडित शंकर घोष से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया. अपनी माता से आपने राग संगीत की शिक्षा ली. संगीत के साथ साथ आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक की शिक्षा भी प्राप्त की. आज आप युवा पीढ़ी के भारतीय पारंपरिक संगीत के प्रति रुचि और सम्मान विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है. तो ऐसे महान शख्सियत, महान विभूति सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत.
2: थैंक यू सो मच
1: जी. उन्मेष जी, रेडियो मन भवन में आपका मैं स्वागत करता हूँ. आपका तबले से जो रिश्ता है वो मात्र 1 साल की उम्र से रहा है. बचपन में उस संगीत यात्रा को आप किस तरह याद करते हैं?
2: मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज है वो ये है कि मैं पिताजी जब रियाज करते थे तो मैं गोदी में सोता था और मम्मी माँ जी भी जब रियाज करती थी तानपुरा लगा के और मैं गोदी में फिट होता था. तब की अर्लीस्ट मेमोरी है मेरी. और तब मुझे बहुत गहरी नींद आती थी. जब भी कोई कॉन्सर्ट गए या उन दोनों का रियाज सुनता था, बहुत ही गहरी नींद. और नींद ऐसी कि एक सुनाई भी दे रहा है लेकिन डीप स्लीप भी हो रही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. वो अभी भी होता है कभी कभी. वो एक स्टेट में माइंड चला जाता है जहां आप थोड़ा बहुत सुन भी रहे हो लेकिन डीप स्लीप में भी हो. वो इस मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वो स्टेट को.
1: हमारे मराठी में एक कहावत है, गवळ्याचं पोर सुरात रडतं. इसका मतलब है कि गवई जो है उसका बच्चा रोता है वो भी सुर में रोता है. तो मैं एक आप 6 साल की उम्र में आपका पहला परफॉर्मेंस रहा अपनी माताजी के साथ, तो उस समय की कुछ यादें हैं?
2: याद तो ज्यादा कुछ नहीं है. ये याद है कि मैं ऐसे ही शॉर्ट्स और टी शर्ट में गया था और सबको पता था वहाँ कार्यक्रम में कि मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि आप भी बजाओ 1-2-3 भजन के साथ. भजन का कॉन्सर्ट था मम्मी का. तो फिर मैंने जो सुना, क्या बजाया क्या पता, अभी अच्छा हुआ वीडियोस नहीं थे तब के. लेकिन जो मुझे याद है कि बजाने के बाद मुझे वो माला पहनाई थी और वो माला यहाँ से पूरा पैर तक आ रहा था क्योंकि मैं इतना छोटा था. तो यही मीठी यादें हैं
1: जी. जैसे आपके पिताजी पंडित सुनील बैनर्जी आपके गुरु भी रहे हैं, तो उनसे शिक्षा की तालीम लेने आपने शुरू की, क्या अनुभव रहा? क्योंकि पिता ही गुरु है
2: जी. ऐसा कोई आज से शुरू हुआ, ऐसा कोई स्टार्टिंग डेट नहीं था. वो घर पे रह के आप बच्चे जैसे घर की भाषा सीखते, वैसे ही तबला भी सीखना हो गया. और कंटिन्यूस तालीम होती थी, ऐसे क्लास जैसे तो कभी नहीं होता था। मैं जब रियाज कर रहा हूँ आके कुछ बता दिया, या वो सिखा रहे तब मैंने कुछ सुन के फिर अपने हिसाब से किया, फिर उन्होंने वो करेक्ट किया, ऐसे रोज का ही था ये।
1: अच्छा, आपने फरुखाबाद बाज की गहन शिक्षा ली है, इस बाज की ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको अधिक आकर्षित करती है?
2: देखिए, आजकल तो घराने सब लोग थोड़ा बहुत सब घराना बजाते हैं, ये मैं कहूँगा तबले की खासियत ही ये है कि लास्ट 40-50 साल से हम लोग सारे घराने बजाते हैं। तो सिर्फ फरुखाबाद की जो अगर खासियत मुझे जो पसंद है अगर कहना हो, तो मैं ये कहूँगा कि बोल्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिवली किया जाता है। जो दो बोल हम सोच भी नहीं सकते कि ये साथ में जा सकते हैं, वो फरुखाबाद में कर दिया है।
1: अच्छा,
2: तो ये जो कॉम्बिनेशंस है वो जब सीखते हैं तो ऐसे एक आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसे भी कैसे सोचा होगा उस्तादों ने, पंडितों ने। और जो लिटरेचर है, काव्य है कॉम्पोजिशंस के, वो भी सुन के हम तो सोच ही नहीं पाते कि पुराने लोगों ने कैसे ये सोचा होगा। बहुत मुश्किल है ऐसे काव्य करना तबले के माध्यम से।
1: तो ये विशेषता रही है। आपकी माताजी भारती नानावती बनर्जी स्वयं एक प्रसिद्ध गायिका है, पटियाला घराने की शिष्या है, उनके गायन और संगीत संस्कारों का आपके तबला वादन पे किस तरह का प्रभाव है?
2: देखिए, कोई भी म्यूजिशियन हो, अगर वो गायक हो तो उनको तबला जानना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो तो उनको गाना, तबला, वो सभी जानना है। तो एज अ तबला प्लेयर गाना जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं खुद बहुत अच्छा ख्याल गा लूंगा या कुछ, लेकिन उसका नॉलेज होना, कैसे बंदिश बनाई जाती है ताल के हिसाब से, या राग का क्या मूड होता है, उस हिसाब से फिर आपका बजाना थोड़ा और एक इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा अच्छा बनता है म्यूज़िक के साथ। तो बहुत ही ज़रूरी है गाना जानना थोड़ा बहुत।
1: जी, हम आपके शुरू से दौर से, माता पिता से आके अभी आपके एक गुरु जो है शंकर घोष जी, एक महान कलाकार थे, मार्गदर्शक उन आपके रहे हैं, उनका आपके संगीत जीवन में क्या महत्व है या उनका प्रभाव कैसे आप पे पड़ा?
2: मैंने मेरे दोनों दादाजी, मम्मी के और पिताजी के फादर्स, उनको मैं मिला नहीं, मेरे आने के पहले ही वो चल बसे थे। तो पिताजी के जो गुरुजी पंडित शंकर घोष जी थे, उनको ही मैं बचपन से, दादाजी क्या होते वो ही थे मेरे सहन में। तो हम लोग जब जाते थे उनको मिलने, या मेरा कोई भी परफॉर्मेंस हो या कुछ, तो पापा हमेशा उनके पास लेके जाते थे कि पहले उनको सुनाओ। फिर वो ऐसे लोगों के पास ना, आप एक दो घंटे भी आपने बिताए ना, तो आपको सालों का मटेरियल मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, सोचने का। तो वैसे उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, जब भी वो हमारे घर आते थे या हम उनको मिलने जाते थे, तो एक दो चीज कुछ बस ऐसे कुछ सर्किट में उन्होंने स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर दिया, बस अब सालों उस पे आप सोच सकते हैं। ये दृष्टि उनमें थी। और वो मुझे, जब मैं थोड़ा और प्रोफेशनली बजाने लगा और उन्होंने मुझे पहली बार एज अ पब्लिक परफॉर्मेंस सोलो में सुना, तो उन्होंने मुझे एक चीज बहुत बोली जो मुझे एज अ ब्लेसिंग मैं लेता हूँ। उन्होंने मुझे छूट दी कि तुम अपने बंदिशें बनाओ और एंजॉय करो उसको, रोज एक बंदिश बनाओ, ऐसा कहते थे वो।
1: क्योंकि मेरे मीटर से चलो ऐसा नहीं था,
2: नहीं उनका तो बिल्कुल ही नहीं था। और एक स्टेज के बाद, ऑफ कोर्स आपको पहले वो सब अच्छे से डाइजेस्ट करना है, फिर वो कहते थे रोज बनाओ, बनाते बनाते जैसे कोई कवि पहले दिन ही तो मास्टरपीस नहीं लिखते हैं।
1: बराबर।
2: तो ऐसे लिखते लिखते लिखते लिखते फिर एक स्टेज आता है जब रोज वो एक मास्टरपीस लिख सकते हैं। तो उनकी अप्रोच भी वैसे थी कि आप बंदिश बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो।
1: मेरा अगला सवाल है कि तबला एक ताल वाद्य नहीं, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, तो आपके जीवन में तबले का असाधारण महत्व रहा है, तबले के बारे में थोड़ा बताइए,
2: यानी कि
1: जैसे
2: आपके
1: आपके लिए
2: मेरे लिए
1: हाँ, कि ताल वाद्य नहीं है, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, आपने तबले को कैसे समझा है?
2: ओके, तो तबला मेरे जिंदगी में एक जिंदगी का ही हिस्सा है, मैंने इसको अलग से कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं बचपन से वो ही देख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट, इनफैक्ट पैदा होने के पहले भी सुन रहा हूँ,
1: गर्भ संस्कार ही हुए हैं।
2: एग्जैक्टली
1: जी,
2: तो ये मेरे जिंदगी का हिस्सा ही है, हालांकि मैंने पढ़ाई भी की इंजीनियरिंग वगैरह, मैं स्पोर्ट्स में भी काफी इन्वॉल्व रहता था, क्रिकेट फुटबॉल दोनों, तो दोनों सीजन में एक्टिवली ट्रेनिंग में रहता था, पर हमेशा तबला मेरे लिए सा या सम पे आने जैसा था, कि सब कुछ पूरे दिन कर लिया, पढ़ाई स्कूल ये वो, फिर तबला लेके बैठता था तो लगता था अब मैं घर आ गया, अब मैं सम पे आ गया, या ये मेरा सा है। और ये अभी मैं एनालाइज करता हूँ, ये ऐसे कॉन्शियसली मैंने कभी सोचा नहीं था।
1: जी, मैं वही आपको प्रश्न अगला पूछने वाला था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तबला एक दोनों अलग क्षेत्र है और दोनों क्षेत्र में आप महारथी है, तो ये कैसे आपने साध्य किया?
2: मुझे ऐसा लगता है कि तबला या म्यूजिक इन जनरल, तबला इन पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें गिनती का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है और कॉम्बिनेशंस बनाने वर्ड्स के साथ भी, वो चीज और कोई भी एनालिटिकल एकेडमिक सब्जेक्ट, मैथ्स हो जाए या कंप्यूटर साइंस हो जाए या इन जनरल साइंस हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, आई कांट से साइंटिफिकली, पर मुझे ऐसा लगता है वो ब्रेन में कहीं वो एक ही जगह से होता है, ये मेरी फीलिंग है। अब किसी को इंटरेस्ट है तो आप एक्चुअली रिसर्च कर सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्क्स लाइक दैट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुछ चीजें तबले में मुझे आसान लगती थी एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजें मुझे मैथ्स क्लास में या कंप्यूटर साइंस में आसान लगती थी। अब ये कंप्यूटर या मैथ्स के लिए तबले पे हो रहा है या तबले के लिए मैथ्स या कंप्यूटर पे हुआ, ये मुझे पता नहीं है, पर मैं यही सोचता हूँ कि शायद इसलिए कहते भी है कि बच्चों को म्यूजिक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट वैसे होता है, जो पढ़ाई में भी हेल्प होता है, एट द सेम टाइम पढ़ाई करना भी जरूरी है अगर आपको म्यूजिशियन भी बनना हो तो। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आई एम श्योर कोई साइकियाट्रिस्ट या ब्रेन सर्जन इस पे बेहतर बता पाएंगे।
1: जी, मेरा दूसरा सवाल है, जब अभी ये जेन जी भी सुन रहे हैं हमारा साक्षात्कार, जेन जी अभी अल्टा बीटा गामा जो कुछ अगली पीढ़ी है, तो इनके लिए आधुनिक संगीत है, साथ ही साथ डिजिटल माध्यमों के साथ ये ज्यादा गैजेटेड हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को या ऐसी पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर लेके जाना आपको क्या चुनौतीपूर्ण लगता है?
2: लगता है बिल्कुल, स्पेशली बड़े शहरों में, अजी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम हो गया है। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो ये है कि अभी सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, कोई भी बच्चा आजकल खाते वक्त ही माँ बाप फोन पकड़ा देते हैं और फिर वो स्वाइप करने लगते हैं, कोई चीज अगर 2 सेकंड भी पसंद ना आए तो नेक्स्ट वीडियो, ये चीज ब्रेन के लिए मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और देयरफॉर अगर ये आपका ब्रेन स्टेट रहा कि आप 2 सेकंड भी कुछ चीज बिल्डअप नहीं होने देंगे, फिर क्लासिकल म्यूजिक के लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है।
1: जी, ड्यूरिंग कोविड या कोविड के बाद एक अलग ट्रेंड चला या चला आ रहा है, जिसका ऑनलाइन या ऑनलाइन माध्यमों के साथ सीखना, डिजिटल माध्यमों के साथ संगीत सीखना या प्रत्यक्ष गुरु के घर जाके उनके फ्रंट बैठ के सीखना, ये जो है क्या आपको लगता है प्रत्यक्ष गुरु के साथ सीखना अच्छा है या आने वाले अभी ये अलग गैजेट आए?
2: देखिए, ऑफकोर्स गुरु के साथ बैठ के सीखना बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर आप कोई ऐसे जगह पे है जहाँ आप जो सीखना चाहते हैं उनके वो फील्ड के बड़े गुरु नहीं है, या विदेशों में जैसे होता है, तब गलत जगह सीखने से अच्छा है ऑनलाइन सीखना। तो ये इम्पोर्टेंस स्टूडेंट को समझना बहुत ये है, क्योंकि कुछ जगह आप कहीं भी चले गए थोड़ा ये सिखा दीजिए, गलत आपका जिंदगी भर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उससे बेहतर है ऑनलाइन अच्छे गुरु के पास सीखना। और अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं।
1: आप भी डिजिटल या इसका यूज करते हैं?
2: जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स छोटे शहरों में है या विदेशों में है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं।
1: अच्छा सर, आपकी बहुत समृद्ध परंपरा रही है, पीढ़ी एक, पीढ़ी दो, पीढ़ी तीन, पीढ़ी, ये जो पूरी विरासत है संगीत की उसे आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेवारी आप पे है, आपको क्या लगता है?
2: हाँ बिल्कुल है, हम सारे म्यूजिशियंस की जिम्मेदारी है कि हम अगले जनरेशन को ये जो खजाना है, ये मेरे कर्नाटिक गुरुजी बहुत खूबसूरत चीज कहते हैं कि हम जब रोड से जाते कोई ट्रैफिक से, तो आम इंसान जो भी कर रहा है उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि इतना खजाना है हमारे पास, तो वो हमेशा कहते हैं कि तुम सोचो तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास ये खजाना है, हजारों करोड़ों लोगों में नहीं है। तो ये खजाना ऐसा खजाना है कि आप बांटने पे बढ़ेगा, तो आप जितना बांटते हैं सिखाते हैं और आपको भी नई चीजें दिमाग में आती है, इसलिए मैं सिखाना भी बहुत पसंद करता हूँ। कि आज भी जैसे हम वर्कशॉप कर रहे थे तो और चीजें सूझ रही थी, आइडियाज आ रहे थे, तो ये इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। और एक चीज पिताजी कहते थे कि सीखने का साइकिल तभी कंप्लीट होता है जब आप सिखाना चालू करते हैं, तब वो साइकिल पूरा होता है।
1: जी, मेरा एक आखिरी सवाल, रेडियो मन भवन के श्रोता भी सुन रहे हैं, हमारे युवा भी सुन रहे हैं, आप जो तबला है या भारतीय शास्त्रीय संगीत जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए तबले में क्या उन्होंने पहले सुनना चाहिए, विशेष कुछ रचनाएं हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: मैं पहले कहूंगा कि आप ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, पहले उसका टेस्ट डेवलप कीजिए। ये एक्चुअली सिर्फ तबला नहीं, कोई भी म्यूजिक फॉर्म हो, पहले आप ये मैं खाने का एग्जांपल देता हूँ हमेशा, कि आप अगर कोई नए शहर में गए जहाँ आप नया कुछ ट्राई कर रहे हैं, जो आपने कभी नाम भी ना सुना हो, कोई आइडिया नहीं आपको, तभी आप टेस्ट करें, बिना क्या आप जाके शेफ के पास पूछते हैं कि क्या डाला है, कितना नमक मसाला, ये नहीं करते हम लोग। हम पहले टेस्ट डेवलप करते, दो तीन बार खाए, अरे ये बढ़िया है, फिर हम कोशिश करते हैं कि अच्छा इसका रेसिपी क्या है, कैसे क्या करना है। वैसे ही म्यूजिक में आप पहले बस सुनिए, कुछ समझने की जरूरत नहीं, अच्छे कलाकार इतने लेजेंड्स हैं, अभी एडवांटेज है यूट्यूब का, आप सारे लेजेंड्स को सुन पाते, आप टेस्ट डेवलप कीजिए, रेसिपी खुद ब खुद रिवील हो जाएगी।
1: जी, जैसे हमारे खानदेश रीजन का हम यदि विचार करें तो तबले की ओर बच्चियां सीखने के लिए नहीं जाती है, क्या है इसमें करियर का?
2: ये बस एक क्या कहूँ, स्टिग्मा या स्टीरियोटाइप हो गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं। ऑफ कोर्स फीमेल्स,
1: आप लड़की हो तबला नहीं सीखना,
2: बिल्कुल सीख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक सोशल स्टीरियोटाइप हो गया है और कुछ फर्क नहीं है इसमें। और कितने अच्छे फीमेल आर्टिस्ट है भी ऑलरेडी है।
1: सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे रेडियो के श्रोताओं को समापन की ओर लेते जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है, तबला सीखने की उम्र क्या है? जैसे आप तो गर्भ संस्कार से ही तबला और संगीत से जुड़े हैं, लेकिन एक सही उम्र क्या है?
2: पहली सांस से लास्ट सांस तक आप कभी भी सीख सकते हैं।
1: क्या बात है,
2: कोई उम्र नहीं है।
1: क्या संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी वहां उसमें होना चाहिए। इसी के साथ रेडियो मन भवन के आप स्टूडियो में आए, आपका बहुमूल्य समय यहाँ व्यतीत किया, हमारे श्रोताओं को जो पढ़ने वाले प्रश्न थे वो पूछने की चेष्टा मैंने की, आपका बहुत बहुत आभार हमारे पूरे केसी सोसाइटी की ओर से और रेडियो मन भवन की संपूर्ण टीम की ओर से, धन्यवाद।

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं, कितने ही श्रृंगार करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस श्रृंगार के बारे में सोचा है जो आत्मा की शोभा बढ़ा दे? कबीर साहब आज ऐसे तिलक की बात कर रहे हैं जिसे लगाने के बाद तीनों लोकों में आपकी शोभा बढ़ जाती है। आज का दोहा सुमिरन के गौरव का उत्सव है। श्रोताओं, कबीर आज भक्ति को एक आभूषण के रूप में देख रहे हैं। वे बता रहे हैं कि राम का नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य अलंकार है। तत् तिलक तिहुं लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। तत् तिलक तिहुं लोक में राम नाम निज सार, तत् तिलक तिहुं लोक में राम नाम निज सार।

श्रोताओं, इस दोहे का सौंदर्य अद्भुत है। कबीर कहते हैं, तत् तिलक तिहु लोक में, यानी यह जो तत्व का तिलक है उसकी चमक केवल इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि तीनों लोकों में है। और वह तत्व क्या है? राम नाम निजसार, परमात्मा का नाम ही वह असली तत्व है, वही जीवन का निचोड़ और सार है। कबीर आगे कहते हैं, जन कबीर मस्तक दिया, जब कबीर ने इस राम नाम रूपी तिलक को अपने मस्तक पर धारण किया, यानी अपनी बुद्धि और अपने विचारों को उस परमात्मा में समर्पित कर दिया, तो क्या हुआ? शोभा अधिक अपार, उनके जीवन की, उनके व्यक्तित्व की शोभा इतनी बढ़ गई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दर्शन की दृष्टि से देखें तो मस्तक पर तिलक लगाना स्मृति और सजगता का प्रतीक है। जब राम का नाम हमारी स्मृति में, हमारे मस्तक में बस जाता है, तो हमारा पूरा जीवन प्रकाशित हो उठता है। यह वह सौभाग्य है जिसे पाने के बाद संसार की सारी चमक फीकी लगने लगती है। कबीर यहाँ सिखा रहे हैं कि असली सौंदर्य चेहरे का नहीं बल्कि उस नाम का है जो आपके भीतर गूंजता है। जो उस तिलक को लगा लेता है वह जगत में अनमोल हो जाता है। दोस्तों, हम रोज आईने के सामने सजते हैं, संवरते हैं। आज जरा सोचिए, क्या आपने वह नाम का तिलक लगाया है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती? आज सुमिरन को अपना श्रृंगार बनाइए, फिर देखिए आपके जीवन में कितनी अपार शोभा आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए

नमस्कार, ओम शांति। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। इसके ऊपर हमने चिंतन किया, विश्व स्वधर्म और सूर्य क्या है ये भी देखा, और ये सब होने के बाद जो जे वांछील तो ते लाहो, हर एक की इच्छा अगर पूरी होनी है तो इच्छा अच्छी कैसी है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि ये टर्निंग पॉइंट है, या एक एपिसोड पूरा होने के बाद दूसरा एपिसोड शुरू होता है, क्योंकि ये प्रीफेस है। सतयुग का जो रोड मैप मैंने कहा था कि माउली के दिमाग में या मन में या विजन में होगा, सतयुग कैसे आएगा, या स्वर्ग जिसको कहते हैं, या पृथ्वी पे इसी धरती पे सुख शांति के दिन कैसे आएंगे, ये जो विजन उनका था उसके लिए प्री कंडीशन है कि विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, फिर जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। जब ये होता है तो क्या होगा, तो बाकी जो अभी ओवी है, बाकी जो लाइनर्स है, तो मुझे लगता है ये वर्णन जो है वो स्वर्ग का भी है, और स्वर्ग लाने के लिए जो निमित्त है, जो कारण है, और जिन्होंने लाने हैं उनका भी वर्णन है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अगली लाइन जो है तो ये है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता। वर्षत सकल मंगली, वर्षत मीन्स वर्षा, शॉवर, जैसे बारिश होती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो जो गर्मी है, तपत है धरती की, वो ठंडी हो जाती है, और ठंडक जो है बहुत अच्छी लगती है दिल को। अभी जो हम कहते हैं कलयुग में हमारे जो मन है, शरीर तो तपता ही है, वो गर्मी का मौसम रहता है तो शरीर तपता है, धरती तपती है, और बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, और हर कोई बारिश के लिए राह देखता है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं ना बारिश के लिए राह, कब आएगा, क्या होगा, बारिश कब आएगी, हर एक का प्रेडिक्शन कुछ रहता है, उसके लिए बहुत सारी तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वैसे अभी ये कलयुग के अंत में सबके मन भी तप गए हैं, पक गए हैं, और कहीं ना कहीं शांति की, शीतलता की बारिश अगर होगी तो मन को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वर्षत सकल मंगली, और कैसे है, ऐसे लोग आने चाहिए कि जिनकी वर्षा जो है, वर्षा एक्चुअली उपमा दी है, वर्षत सकल मंगली, मंगल, वर्षत सकल मंगली, इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो हमेशा अच्छे विचारों की, सद्भावना की, या सत्संकल्पों की बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। ये कैसी हो सकती है वर्षा? वर्षत सकल मंगली, और सकल मीन्स हमेशा। इसके ऊपर से मुझे याद आया कि मंगल जो है, मंगल ग्रह बोलते हैं ना, मंगल, और मंगल हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं, मंगल मुहूर्त, मुहूर्त जो है वो भी बोलते हैं मंगल, हर कुशल मंगल बोलते हैं, किसी का अगर कुशल मंगल है ना, सब पवित्र या अच्छा। लेकिन यही मंगल अगर हमारे जन्मपत्री में आ जाता है तो क्या होता है, यही मंगल जन्मपत्री में आ जाता है तो कभी कभी वो अमंगल हो जाता है। अभी जो लड़की के पिता है और किसी लड़की के जन्मपत्री में, या लड़के के भी जन्मपत्री में मंगल है, तो कितनी तकलीफ होती है ये बोलने की जरूरत नहीं है, जो अनुभवी है सब जानते हैं। तो ये मंगल जो है, कभी मंगल है कभी अमंगल है, मंगल वही है,
लेकिन हमारे लिए कभी वो अमंगल होता है कभी मंगल होता है। लेकिन माउली जो बोलती है वर्षत सकल मंगली, हमेशा के लिए मंगल, कभी भी अमंगल नहीं है। और ऐसी वर्षा होनी चाहिए, मीन्स हम जब भी कोई भी जो अच्छे लोग हैं जिनको हम संत कहते हैं फरिश्ते कहते हैं, वो कैसे होंगे? हमेशा वर्षा करेंगे अच्छे विचारों की, सद्भावनाओं की, सत विचारों की, सत संकल्पों की वर्षा करेंगे। और जो कोई उनके सामने आएगा उसे आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस। और गुड विशेस और संकल्प जो है या आशीर्वाद जो है उसका हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। कभी भी कुछ भी प्रसंग होता है, शादी ब्याह होते हैं या किसी का बर्थडे होता है, तो हम हमेशा गुड विशेस देते हैं। क्यों देते हैं गुड विशेस? संकल्प। हम अगर हमेशा शुभ चिंतन करते हैं, दीपावली में किसी सबको ग्रीटिंग देते हैं, दीपावली शुभ चिंतन, कोई भी त्योहार है तो उसके लिए शुभ चिंतन करते हैं, तो ये शुभ चिंतन हम कभी कभी करते हैं, त्योहारों के निमित्त करते हैं या कोई स्पेशल पर्पज है तो करते हैं, सकल मंगली नहीं, वर्षत सकल मंगली। तो माउली जो है, ज्ञानदेव जो है, वो देखते हैं कि ऐसे लोग हमेशा होने चाहिए कि जो हमेशा के लिए सकल मंगली, हमेशा के लिए सुमंगल का चिंतन करेंगे, सुमंगल चिंतन करेंगे, उनका चिंतन हमेशा मंगल होगा और वो सबको बौछार करेंगे। ईश्वर निष्ठांची मान दियाड़ी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाली। मांदियाली, मांदियाली मीन्स क्या है? बहुत बड़ा समुदाय है, ऐसे नहीं कि एक दो आदमी आएंगे और एक दो फरिश्ते होंगे, संत होंगे और वो शुभ चिंतन करेंगे, नहीं, बड़ा समुदाय होगा। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मांदियाली मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा संकल्प करेंगे तो क्या होगा? वातावरण में बदलाव आएगा। और ये वातावरण में बदलाव आएगा तो इसलिए उन्होंने उपमा दी है मांदियाली, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाली। और वो मांदियाली क्या है? जिनकी निष्ठा ईश्वर के पास है। निष्ठा, निष्ठा मीन्स सिर्फ विश्वास नहीं है, निष्ठा मीन्स एक होता है कैसी भी परिस्थिति आने दो विश्वास अटूट रहता है, और इसलिए उसे निष्ठा बोलते हैं, ईश्वर निष्ठ, ईश्वर में जिनकी निष्ठा है ऐसे। और दूसरा भी निष्ठा भी बोलते हैं, निष्ठा मीन्स ध्यान, ईश्वर का ध्यान जो करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? हमेशा ईश्वर का चिंतन करेंगे। और जब मन में राम रहता है तब कभी हराम होता नहीं है और जिंदगी में आराम भी आ जाता है। अगर मुझे जिंदगी में आराम आना चाहिए तो मन में राम होना चाहिए। और ईश्वर निष्ठांची मांदियाली, हमेशा चिंतन उनका ईश्वर के बारे में होगा तो मन में कोई बुरे संकल्प आएंगे ही नहीं। और इसलिए ज्ञामाउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाली, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता, इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो ये रिकैप अगर करेंगे तो क्या होगा? जैसे दुरितान से तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाओ, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। ये होने के बाद अभी कैसी कैसी कंडीशन आनी चाहिए, ये जो माउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाली, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता, इसके ऊपर अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार,
ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को अब एक नए अंदाज से देख रहे हैं। खुशी यानी कि कंटेंटमेंट यानी कि स्टेबिलिटी। और अब अगर हमने उन फैक्टर्स को देखना शुरू किया है जो हमारे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को अनस्टेबल या ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम अभी तक नेचुरल मान रहे थे और ऐसा लगता था कि इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि पावर मेरे अपने हाथ में है। एक्चुअली एनी टाइम द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरे इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मुझसे या मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो मैं अब कर सकता हूँ। जैसे ही मुश्किल सामने आती है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हमने पास्ट को देखा सिस्टर शिवानी, अमेजिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड एक्चुअली इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स इज कि पास्ट, और एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया कर कि मैं कहीं थी और 2 घंटे के लिए ड्राइव, क्योंकि हमारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आई रियलाइज्ड कि हम जो भी बात कर रहे थे या तो वो सचमुच पास्ट से जुड़ा हुआ था, उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको देख रहे थे, या कुछ ना कुछ हम फ्यूचर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो कि हाउ इट विल बी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने उनसे भी कहा कि लेट्स ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, एंड वी बिकेम साइलेंट।
1: There was nothing to talk about.
0: You know, because present में आते ही traffic दिख रहा था फिर सामने। So actually, how to be really in present? उस पे बात थोड़ा सा करना चाहूँगी।
1: It is very important when we are saying being in the present, कि present moment में my state of mind क्या है? होता क्या है कि जैसे ही हम past या future के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते हैं फिर discuss करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड फ्लक्चुएट होने लगती है। पास्ट की अगर कोई अनप्लेजेंट के बारे में सोचा तो हर्ट आएगी बात में, एंगर भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म होने लगेगी, सो वी गो लाइक दिस। फ्यूचर आएगा तो एंटिसिपेट करेंगे कि ये होगा, खुश होंगे, फिर फियर आएगा कि हो सकता है नहीं हो। तो ये बहुत सारी जो अनस्टेबल कर देती हमें, ये सारी इमोशंस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती हैं। बींग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट डजेंट मीन यू कांट टॉक अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल सारा दिन में हमें क्या करना है, लेकिन ये ध्यान मन की स्थिति, आई एम हैप्पी नाउ। सी वेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी से ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा यू नो, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत खुशी होगी, और अभी ऐसे ऐसे जा रहे। यू कैन प्लान वॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर टूमोरो, बट राइट नाउ चेकिंग कि हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हैप्पी तो मैं ऑलरेडी
0: हूँ,
1: अभी हूँ। नॉट कंडीशनिंग योर माइंड प्रोग्राम, हमें पता ही नहीं चलता, हम अनअवेयर हैं कि हम अपने माइंड को कंडीशन करते जाते, जब ये होगा ना तो तुम खुश होगे, जब ये होगा तो तुम खुश, तो वो माइंड प्रोग्राम कर लेता है और वो वेट करता है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, और फिर वो डिपेंडेंसी, फिर वो फियर, ये सब आता। तो इम्पोर्टेंट है माइंड की स्टेबिलिटी को अभी देखते रहें, yes this will happen but my happiness is not dependent.
0: I think to somewhere what we need to do is that see meri abhi present mein meri situation kya hai, you know, meri mental state kya hai, phir main past ko bhi analyze kar sakti hu aur future ke bare mein bhi anticipate ya jo planning hai wo ki ja sakti hai, you know.
1: Lekin jab bhi wo sab kuch kar rahe hain, keeping the focus on my state of being, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है, सपोज हम पास्ट में भी किसी हर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माई हर्ट, तो जस्टिफाई करने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी, यू नो, मुझे लगता है आई एम राइट जब मैं जस्टिफाई करती हूँ, बट आई वॉन्ट बी हैप्पी बाय दैट, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी स्टेबल, एंड वंस आई डू दैट I will not blame anyone for the hurt. Right now, my mind is still blaming other people for the hurt. And that's why I want to talk about it. I want to discuss it. The day I'm able to tell myself ki nahin, main theek hu, main stable hu, mujhe zarurat nahin lagegi. Kyunki main unko ab zimmewar nahin thehraungi apne dard ke liye. Mujhe ye pata hai ki ye maine kiya, maine create kiya, mujhe finish karna hai. So then I will be very stable. See, discuss karna, lekin uska result kya? हम डिस्कस करते हैं सो दैट वील फील बेटर, चलो मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। तो बात करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बात करूंगी कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर आप ऊपर से बोलेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए
0: अच्छा,
1: था उनको आपके साथ।
0: दो जने जब हों तो, और 2 घंटे हमने निकालने, तो बात क्या करें फिर?
1: अगर आपको पास्ट की कोई बात से सीखना भी है और आप 2 जने बात कर रहे हैं, wouldn't it be nice to discuss that what I went through when I went through this incident? Maine kya learn kiya? How did I grow and how I am growing?
0: That's what I did, you know.
1: Yeah,
0: that's what I'm saying.
1: See, that as long as pura focus apni personal internal growth ke upar hai, to usse kya hoga? Aap empowered hote jayenge. And aapki jo wo discussion hogi, agar do logon ke saath hai, aapki discussion dusre ke liye bhi empowering hai. Kai bar hume realize hi nahi hota ki jab hum ek dusre ko phone karke ya ek dusre se baat karte hue ghanton ghanton unko apni wo wali kahaniyan sunate rehte hain
0: jahan logon ne
1: jahan logon ne hame dhoka diya, the person is not interested sometimes. And hum kya kar rahe hain, apna dard apna wo sara hum dusre ko bhi de rahe hain. Pehle hi samne wale ke paas apna share of problems hai. So sharing and discussing hurt and pain doesn't create any
0: actually cribbing.
1: पास्ट का इमोशन प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड किया, फिर आज डिस्कस किया तो वो और पक्का हो गया, फिर इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे वो और पक्का होता जाएगा, एंड देन माई एवरी डे इज इन हर्ट. इट्स नॉट जस्ट yesterday, but it's today, then it's tomorrow, and it's every day. That's where it becomes very damaging. Because then, it becomes very damaging. Because then, it becomes very damaging.
0: So somewhere that actually that is needed to be checked. So now we are checking it. And wonderful, you know, the way it is coming out. Ki, जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें realization होता है कि हम कर क्या रहे थे.
1: किसी आपने देखा तब आपको रियलाइज हुआ. अभी तक तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हम कितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं.
0: Another factor, which actually I'll say now, I'm very careful what I'm going to say, is that I'm not able to create that happiness. I'm not saying it takes away my happiness. Is that I get so stressed out.
1: Yeah.
0: And like, we're all living in this एरिया, मतलब जो हमारा काम का या जिंदगी का हर रोज का, मतलब घर तक पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक में 2 घंटे आपको लगते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जो आपको चीजें वहां पे होनी है या करवानी है, इट्स सो स्ट्रेस्ड आउट एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट इज टू बी डन अबाउट दैट?
1: उसके भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको पहले चेक करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप वी विल बी एबल टू फ्री फ्रॉम दैट. कि पहली बात तो स्ट्रेस शब्द को ही देखें तो इट्स अ वेरी न्यू वर्ड इन द वोकैबुलरी. आई थिंक अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो हमारी वोकैबुलरी में ये कोई वर्ड नहीं था, स्ट्रेस वर्ड नहीं था. हम कहते थे चिंता, हम कहते थे टेंशन, लेकिन अभी तो स्ट्रेस मतलब वी आर जस्ट टेलिंग आवर सेल्फ कि हम एक स्टेप हायर होते जा रहे हैं. और ये आज हम सिर्फ कॉरपोरेट और इस सर्कल में नहीं लेकिन स्टूडेंट्स भी इस वर्ड को यूज करते हैं. जिस एज ग्रुप को हम कहते थे बेस्ट लाइफ, यू नो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, एंड that's become most one difficult. Of the most difficult.
0: I didn't say worse, but yes, one of the most difficult, because I'm seeing children going through so much of again stress, and it's just a thought process, you know, apne hi thought process ko aise create karte hue. Another thing which I want to ask Sister Shivani is that, is it the stress we are creating, or is it like, you know, aise aise situations jo aati jati hain और हमने अपने आप को कंपटीशन में डाल दिया है. मैं ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ या आप?
1: ये एक स्टेटस सिंबल है आज पे. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, दैट मींस तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं.
0: क्योंकि अगर कोई फर्क पड़ता है,
1: अगर कोई कुछ कर रहा है, इफ समवन इज इन द रेस एंड वो कंपटीशन में है, उसको स्ट्रेस तो होना ही होना है. एंड दैट इज वाई द डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम जो है वो है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है,
0: ये तो होना ही चाहिए. हमसे लाइक मेरा बच्चा तो हमसे देयर वाज वन मदर हु सेड शी इज नॉट इवन बॉदर्ड, शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड आउट.
1: सी शी इज नॉट इवन कंसर्न्ड एंड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड, ये दो अलग सेंटेंसेस हो गए. एक है कि आप केयरलेस हैं, आपके एग्जाम है, आप पढ़ नहीं रहे, आप केयरलेस हैं. लेकिन एक है आप स्ट्रेस्ड हैं. हम दोनों चीजों को सेम कैसे बोल सकते हैं?
0: लेकिन हम दोनों चीजों को एक ही मानने लग गए हैं.
1: अभी एक है कि मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं रही, दिस इज केयरलेसनेस. तो कोई कहे कि यू आर नॉट कंसर्न या यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडीज. लेकिन एक है कि मुझे इतना ज्यादा वो यू नो दर्द ने घेर लिया कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है. अगर मेरा नंबर ठीक नहीं आया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. ये जो एक होल विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो हमें पकड़ लेता है तो हम पढ़ने भी अगर बैठते
0: तो
1: हमसे पढ़ाई नहीं होती और तब हम कहेंगे कि आई एम अंडर स्ट्रेस. एंड तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते भी हैं लेकिन इट डजंट रियली गो इन, क्योंकि माइंड तो मन नहीं तो पढ़ना है बैठ के, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज टू सिट एंड स्टडी, लेकिन वो मन तो इस साइकिल ऑफ थॉट्स में चला गया है तो वो उसमें कैसे जाएगा. और फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए it doesn't really happen that way.
0: And then we say कि हमने इतना काम किया था, इतना किया था और
1: क्योंकि कितनी बार हम स्कूल में कहा करते थे कि मुझे सब कुछ आता था, यू नो आज मुझे एग्जाम में सब कुछ आता था लेकिन मेरे से ये केयरलेस मिस्टेक हो गई. तो केयरलेस मिस्टेक यूज टू बी अ वेरी कॉमन वर्ड कि, और वो केयरलेस मिस्टेक बाद में ऐसे लगती है कि इतना ईजी था. एंड यू समटाइम्स हैव टू आस्क योर सेल्फ हाउ कुड आई मेक दिस मिस्टेक. मैंने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कर दिए और उसमें इतनी छोटी बात पर मैं कैसे ये गलती कर सकती हूँ. But that itself is a sign कि mind alert नहीं था. तो mind ने 2+2=4 लिखने की जगह 2+2=6 लिख दिया. मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे याद नहीं, you know, कोई चीजें होती है मुझे याद नहीं आ रही उस टाइम मैंने पढ़ा था, लेकिन ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी उस टाइम पता नहीं कैसे लिख दिया. दिस इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि माइंड पे वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस है. तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि यू नो टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू इन फैक्ट यू शुडंट बी अंडर स्ट्रेस, बट यू हैव टू बी इन फैक्ट वेरी वेरी काम. आजकल तो सिखाया जाता है कि

वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस है. तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि यू नो टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू, इनफैक्ट यू शुडंट बी अंडर स्ट्रेस, बट यू हैव टू बी इनफैक्ट वेरी वेरी काम. आजकल तो सिखाया जाता है कि

0: अंडर स्ट्रेस, बट यू हैव टू बी इनफैक्ट वेरी वेरी काम. आजकल तो सिखाया जाता है कि एक चीज करते हुए भी मन कुछ और सोच रहा है, क्योंकि मन को प्रेजेंट में लाने की आदत नहीं है. इसी तरह बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है बच्चों की, दैट इज कंसंट्रेशन. एंड देन दे वांट टू आस्क द एल्डर्स, कंसंट्रेट कैसे करें. इट्स नॉट कंसंट्रेट कैसे करें, कोई टेक्निक नहीं है, हमें किसी ने नहीं सिखाया कंसंट्रेट कैसे करना है. इट इज जस्ट दैट राइट थॉट्स कैसे क्रिएट करें. एंड वो राइट थॉट्स फिर सिर्फ पढ़ने के टाइम आप नहीं सीख पाएंगे. यू नो हम क्या करते, पूरा साल तो कोई भी थॉट्स चल रहे, कैसे अभी चल
1: बोलते हैं कि बैठो 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ.
0: इट वोंट हैपन.
1: प्रैक्टिस नहीं की हुई जब तक.
0: अब अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम हम 5 मिनट साइलेंस में बैठे तो कौन सी थॉट्स क्रिएट होंगे. वो साइलेंस में बैठते ही तो और सारी वो फियर वाले
1: तो डरने लगते हो, डर रहे होते हो.
0: Yes, it won't happen that time. And that is why ये जो हम art of thinking कि किस तरह की thoughts create करने हैं, ये अगर over a period of time करते आए हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा कि stress create करें फिर stress को कैसे finish करें, लेकिन stress create होगा ही नहीं. ये स्ट्रेस का क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण है ये फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इस तरह से. एंड उसमें भी जैसे एंटिसिपेट करते, फेलियर को अगर देख लेते और वो हमारा अभी फियर क्रिएट कर, और जब इतना फियर यहाँ क्रिएट हो जाता तो हाउ विल यू फील. अब आप उसको वर्ड स्ट्रेस दे दो, बट बी सो कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स, इट मेक्स मी फील एब्सोल्युटली लो. एंड फिर वो लो फीलिंग के साथ आप प्रोजेक्ट करने बैठो या पढ़ने बैठो, हाउ कैन यू डू वेल. इट्स नॉट पॉसिबल. तो स्ट्रेस से लेकर कई एक बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको अगर हम चेक करें और चेंज करें और फिर कल चलें अपने जीवन की यात्रा में, आधा काम तो वहीं हो जाएगा. क्योंकि जैसे हमने कहा टेंशन तो नॉर्मल है. जस्ट आस्क एनीबडी, आप 4 साल के बच्चे से ले लो एंड ऑफ कोर्स उस सीनियर एज ग्रुप तक चले जाओ, टेंशन होती है आपको, किसी को टेंशन होती है तो कहेंगे टेंशन तो सबको होती है, ये कौन सा क्वेश्चन है. टेंशन नॉर्मल है, टेंशन नेचुरल है. तो अगर वो नॉर्मल है तो आप इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे.
1: नॉर्मल है तो होती है, तो क्या करना है उसे खत्म.
0: नहीं नहीं, तो वो तो फिर नॉर्मल है. यू नो लेट्स से अगर यहाँ मेरे घुटने में दर्द नॉर्मल है, मैंने बोल दिया उसको, तो फिर उस जब तक आई हैव अ रियलाइजेशन कि ये कोई चीज है जो अननेचुरल है, ये दर्द है, ये मेरा नेचुरल नहीं है कम्फर्ट लेवल, तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए करूँ. लेकिन अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि ये तो नॉर्मल है, तो क्या होगा, उसी के साथ चलना शुरू कर देंगे.
1: उसके ऊपर आप बात काम ही नहीं करोगे ना, बाकी सारी चीजों पे काम करते जाओ.
0: आप नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्या है इसका बिलीफ बहुत क्लैरिटी से चाहिए होता है. क्योंकि हम कंडीशन हैं कि जो चीज नॉर्मल है मतलब वो ठीक है. जैसे ही हमने किसी चीज को कहा कि ये अननेचुरल है, तो हम उसके ऊपर कुछ मेहनत करते. आप घर पहुंचे, आज आपको थोड़ा सा फीवर है, तो आपने देखा थर्मामीटर पे 100 है, 101 है, तो आपको मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है. बिकॉज यू नो दैट इट इज नॉलेज. नॉलेज है कि ये जो ट्राइंगल मार्क जहाँ बना है वो ही नॉर्मल है. वो मर्क्यूरी उससे इतना भी ऊपर होगा ना, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, मुझे बुखार है, आई विल इमिजिएटली टेक मेडिकेशन एंड आई विल गो ऑन टेकिंग माई मेडिसिन आफ्टर एवरी 6 आवर्स टिल दैट मर्क्यूरी कम्स टू दैट नॉर्मल मार्क. उसके बाद अगर मुझे नहीं भी ठीक लग रहा होगा ना, थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है थोड़ा फीवरिश, लेकिन अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर में दिख गया कि ये नॉर्मल है,
1: then I'll not take the medicine.
0: Then I will not. See, that's why what is normal is so important. I will take medicine only जब तक मुझे वो पता है कि ये नॉर्मल नहीं है. अब टेंशन के लिए क्यों नहीं मेडिसिन ले रहे, क्योंकि हमने कह दिया ये ही
1: नॉर्मल है. ये तो है, ये तो आज के इस पूरे युग में.
0: तो फिर हम उसको थोड़ी खत्म करने का कोई भी प्रयास करेंगे. इसलिए पहले तो ये बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से शेक करना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. इसको चेक करना पड़ेगा कि टेंशन कुछ भी नहीं है, इट्स अ पेन. ये एक दर्द है जो आता है मुझे बताने के लिए कि मुझे कुछ चेंज करना है.
1: एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा होने लगता है ना, तब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तब हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. लेकिन थोड़ा
0: लेकिन तब भी हम उसके सॉल्यूशंस कहाँ ढूंढते हैं.
1: हाँ, वो जिस भी तरह से ढूंढ रहे होते हैं
0: कहाँ ढूंढते हैं कि ये सब ठीक हो जाए. हाँ, तब मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा. यस, दैट्स आल्सो वेयर आर वी लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन. तो वी आर लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन परिस्थिति के अंदर कि

0: परिस्थिति ठीक हो जाए, किसी भी तरह परिस्थिति
1: इस सिचुएशन में आपका ऐसे बिहेव करना तो नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस में आना, मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे।
0: तो फिर वही है ना, हमने अगर हम बच्चे को ये समझा सकें कि एग्जाम के टाइम पर रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है, कभी ये कहा कि रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है?
1: आई डोंट रिमेंबर एनीवन।
0: या रिलैक्स्ड ही रहना है बच्चे, नहीं टेंशन होना तो नॉर्मल है, और खुद ही इतने टेंस्ड होते हैं खुद के फेस और बॉडी।
1: ये कहते जाते हैं कि आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स
0: वो रिलैक्स रहो भी कैसे कहते हैं, इट इज सो,
1: और वो हम खुद इतने टेंशन में होते हैं
0: एग्जाम के टाइम पे, द होल एनर्जी इन द हाउस इज वेरी डिफरेंट,
1: नोबडी कैन कम, यू नो उसके राहुल के एग्जाम्स है ना, तो फ्रेंड्स नहीं आ सकते, रिलेटिव्स नहीं आएंगे, इट्स लाइक अमेजिंग द वे वी क्रिएट।
0: तो एक है कि बच्चे को पढ़ना है, उसको साइलेंस चाहिए, एक अलग कमरा आप दे दो, सब कुछ कर दो, लेकिन घर में जितना हो सके वायुमंडल भी हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा। जितना हम नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो बच्चा भी फील करेगा ना कि हाँ सब कुछ नॉर्मल तो है, मैं एक एग्जाम ही तो देने जा रहा हूँ।
1: अंदर से नहीं नॉर्मल होते ना हम,
0: वही ना, अंदर होंगे तो बाहर भी तो ऑटो, लेकिन हमने ही वो एग्जाम को इतना बड़ा, अब हो क्या रहा है, पहले तो फिर भी साल में एक बार एग्जाम आता था, चलो पूरा साल तो चलता, अब वो एग्जाम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है,
1: सितंबर में आएंगे पहले फरवरी बोर्ड्स होंगे,
0: फिर वो वीकली कुछ टेस्ट होंगे, ये व्हाटएवर, तो क्योंकि एवरी एग्जाम एंड एवरी टेस्ट इज बिकमिंग लाइक दिस, तो ओवरऑल पूरा साल ही बच्चे का कैसे बीत रहा है, जैसे कि वो एक हाई प्रेशर उसमें यू नो वर्क कर रहा है, वो माइंड के लिए बहुत डैमेजिंग है। वही चाइल्डहुड जो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड हम कहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि इट इज वेरी वेरी स्ट्रेस सीन। इवन विद बच्चे जो प्ले स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, उनको कितना स्ट्रेस है। डू यू थिंक एक 3 साल का बच्चा एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको भी पेरेंट्स, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस में है कि नहीं मिला तो, ये जो फियर क्रिएट हो रहा है वो बच्चे को उस एज से ही हम वो डेवलप कर देते कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम यू आर अ फेलियर।
1: पर अब हम यहाँ पे क्या, पेरेंट अगर देख रहे हैं तो वो ये कहेंगे ब्लेम गेम यहाँ शुरू होगा, स्कूल्स ऐसे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, पूरा माहौल ऐसा हो गया है, उसमें मेरे को तो करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो जिस स्कूल में मैं बच्चे को डालना चाहता हूँ।
0: हमें क्या क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करानी होगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा, सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं करनी होगी, फियर नहीं क्रिएट करना। वी नॉट सेइंग वी नॉट गोइंग टू स्टडी, ऑब्वियसली जो है फिर माहौल, हमें माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता। स्ट्रेस वर्ड को ही अगर हम देखें तो साइंस में स्ट्रेस वर्ड को हम लेते तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रेजिलियंस। तो प्रेशर तो है ही ना बाहर, पहले तो कभी स्कूल में आई, व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई डिडंट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू, वो मेरे पेरेंट्स गए एडमिशन करा के वापस आ गए और कहा, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी, और कहा आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कूल जाना है। आज वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत से गुजरते, तो ठीक है प्रेशर चेंज हो रहा है, हम बैठकर उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जितना प्रेशर न्यूमरेटर है ना बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर रेजिलियंस इनर स्ट्रेंथ, उस प्रेशर को फेस करने की मेरी अपनी आंतरिक शक्ति। मेटल शीट्स हैं, इंडस्ट्री में हम जाते हैं अलग अलग मेटल शीट्स हैं, हर मेटल शीट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई किया जाता, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ अलग अलग। तो हम में से भी हर एक की अपनी अपनी एक आंतरिक शक्ति है, प्रेशर हर एक के ऊपर इक्वल है, लेकिन जिसकी जितनी इनर स्ट्रेंथ होगी वो उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएगा। आज क्या हो रहा, प्रेशर तो बढ़ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दे रहे और फियर क्रिएट करते जा रहे, फियर
1: उसको तो वीक करते जा रहे,
0: डिनोमिनेटर घटता जा रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है,
1: स्ट्रेस
0: फैक्टर बढ़ता जा रहा है इतना ज्यादा, एंड न्यूमरेटर इज ऑफकोर्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ना, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से है, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं रखा डिनोमिनेटर भी बहुत तीव्र गति से घटता जा रहा, and stress factor is increasing very very fast.
1: Yes,
0: it will go beyond our control.
1: We really need to see, you know. और हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने आप को situations के accordingly इसलिए create कर रहे हैं. You know, situations ही ऐसी हैं, तो हम अपने आप को उन्हीं के उसी के according तो तैयार करते जा रहे हैं. वो तैयारी जो बाहरी है, जो चीजें करनी है, वो तो ठीक है. Amazing. We always have to remember this. Stress is equals to pressure upon my inner strength. You know. तो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शन है मेरी इनर स्ट्रेंथ पे. तो अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ, प्रेशर को तो हमें, क्योंकि हम बाहर की चीजों को कुछ नहीं कर सकते, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है उसे मैं जितना बढ़ाती जाऊंगी, बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाती जाऊंगी, स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा. इट्स ब्यूटीफुल.
0: एंड स्ट्रेस कम होता जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छे होती जाएगी. हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है. जो स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, वो परफॉर्म नहीं करे अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल.
1: वेरी ट्रू. और हम अपने आप भी देखते आए हैं कि जब हम जितना, अभी तक भी तो बच्चे टेंथ से पहले भी तो बच्चा पढ़ रहा होता था और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा होता था. मतलब बच्चा अपने आप अपनी बहुत सारी चीजें कर रहा था. तो हमें अपने आप को देखना है कि हमने एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट किया है, पूरा जो हमने अपने लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे कितना ज्यादा आगे बढ़ाया है. तो वही तो फिर फ्लो होके बच्चे तक जा रहा है. सिचुएशंस, टीचर, स्कूल, लोग, सब कुछ कहते रहेंगे. वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जाएगा. अगेन, जितना वो बढ़ेगा उतना ही मुझे अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को, और मैंने देखा, अमेजिंग, आई नेवर रियलाइज इट, कि जितना वो बढ़ रहा था मैंने न्यूमरेटर को एक्चुअली कम करती गई हूं मैं. क्योंकि वो मैं डरती गई. तो मुझे ना डरते हुए अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है. यू नो, इट्स एक्चुअली सो इजी इफ यू लुक एट इट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं समझा था. थैंक यू सिस्टर शिवानी. लाइक आज हम एक फैक्टर पर बात कर पाए, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव हिट. तो इस पर आप जरूर सोचें. और यू नो, अभी तक का जो बिलीफ सिस्टम्स पर हम जी रहे थे कि जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैंने अपने आप को उसी हिसाब से तो मोल्ड किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी चीजें करनी ही पड़ेंगी. करना और किस स्थिति में मैं करूँगा, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे. पढ़ाना भी है आपको बच्चों को, आपको सब कुछ करना है, तैयारी भी करानी है, बट किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस स्टेज में रहकर कराना है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए राजयोग में हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं. इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो अगर कोई मन में बात उठती है, कोई सवाल उठ रहा है, स्ट्रेस से जुड़े हुए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका स्वागत. आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. स्ट्रेस से जुड़ा एक बिलीफ सिस्टम कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, इसको आज हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए कि कैसे इसको नॉर्मल मान के हमने अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाया है. आसान सा सोल्यूशन है, एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल और स्टेबिलिटी इज नॉर्मल, रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है. फिर देखें कि कैसे जो सोल्यूशंस निकलते हैं. थैंक यू सो मच ओम शांति. और आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. ओम शांति.

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM.
1: श्रोताओं नमस्कार. आज के विशेष प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है. श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की विभूति है पंडित उन्मेष बैनर्जी, जिनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूंगा. उन्मेष बैनर्जी अपनी पीढ़ी के प्रभावशाली तबला वादकों में एक महत्वपूर्ण नाम है. उनका संबंध एक ऐसे परिवार से है जहाँ उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. आपके पिता और गुरु पंडित सुनील बैनर्जी प्रतिष्ठित तबला वादक तथा आचार्य पंडित शंकर घोष के वरिष्ठ शिष्यों में से एक रहे हैं. इनकी माता श्रीमती भारती नानावती बैनर्जी प्रसिद्ध पटियाला घराने के उस्ताद मुनव्वर अली खान की शिष्या और बहुमुखी गायिका है. उनके नाना श्री हरदेव नानावती संगीतकार और समाजसेवी थे. उन्मेष जी का तबले से जुड़ाव बेहद कम उम्र में शुरू हुआ और एक वर्ष की उम्र में तबले के प्रति उनका आकर्षण दिखाई देने लगा और 6 वर्ष की उम्र में आपने अपनी माता के साथ मंच पर पहली सार्वजनिक प्रस्तुति की. आपने अपने पिता पंडित सुनील बैनर्जी के बाज की गहन तालीम प्राप्त की. इसके साथ ही आपने मृदंगम में विद्वान एस के शिखर से कर्नाटक संगीत की लय परंपरा का अध्ययन किया और आचार्य पंडित शंकर घोष से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया. अपनी माता से आपने राग संगीत की शिक्षा ली. संगीत के साथ साथ आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक की शिक्षा भी प्राप्त की. आज आप युवा पीढ़ी के भारतीय पारंपरिक संगीत के प्रति रुचि और सम्मान विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है. तो ऐसे महान शख्सियत, महान विभूति सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत.
2: थैंक यू सो मच
1: जी. उनमें जी, रेडियो मनभावन में आपका मैं स्वागत करता हूँ. आपका तबले से जो रिश्ता है वो मात्र 1 साल की उम्र से रहा है. बचपन में उस संगीत यात्रा को आप किस तरह याद करते हैं?
2: मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज है वो ये है कि मैं पिताजी जब रियाज करते थे तो मैं गोदी में सोता था और मम्मी माँ जी भी जब रियाज करती थी तानपुरा लगा के और मैं गोदी में फिट होता था. तब की अर्लीस्ट मेमोरी है मेरी. और तब मुझे बहुत गहरी नींद आती थी. जब भी कोई कॉन्सर्ट गए या उन दोनों का रियाज सुनता था बहुत ही गहरी नींद. और नींद ऐसी कि एक सुनाई भी दे रहा है लेकिन डीप स्लीप भी हो रही है. वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. वो अभी भी होता है कभी कभी. वो एक स्टेट में माइंड चला जाता है जहां आप थोड़ा बहुत सुन भी रहे हो लेकिन डीप स्लीप में भी हो. वो मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वो स्टेट को.
1: हमारे मराठी में एक कहावत है, गवळ्याचं पोर सुरात रडतं. इसका मतलब है कि गवई जो है उसका बच्चा रोता है वो भी सुर में रोता है. तो मैं एक आप 6 साल की उम्र में आपका पहला परफॉर्मेंस रहा अपनी माताजी के साथ, तो उस समय की कुछ यादें हैं?
2: याद तो ज़्यादा कुछ नहीं है. ये याद है कि मैं ऐसे ही शॉर्ट्स और टी शर्ट में गया था और सबको पता था वहाँ कार्यक्रम में कि मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ. तो उन्होंने बोला कि आप भी बजाओ 1-2-3 भजन के साथ. भजन का कॉन्सर्ट था मम्मी का. तो फिर मैंने जो सुना क्या बजाया क्या पता, अभी अच्छा हुआ वीडियोस नहीं थे तब के. लेकिन जो मुझे याद है कि बजाने के बाद मुझे वो माला पहनाई थी और वो माला यहाँ से पूरा पैर तक आ रहा था क्योंकि मैं इतना छोटा था. तो यही मीठी यादें हैं
1: जी. जैसे आपके पिताजी पंडित सुनील बैनर्जी आपके गुरु भी रहे हैं, तो उनसे शिक्षा की तालीम लेने आपने शुरू की, क्या अनुभव रहा? क्योंकि पिता ही गुरु है
2: जी. ऐसा कोई आज से शुरू हुआ ऐसा कोई स्टार्टिंग डेट नहीं था. वो घर पे रह के आप बच्चे जैसे घर की भाषा सीखते वैसे ही तबला भी सीखना हो गया. और कंटिन्यूअस तालीम होती थी, ऐसे क्लास जैसे तो कभी नहीं होता था। मैं जब रियाज कर रहा हूँ आके कुछ बता दिया, या वो सिखा रहे तब मैंने कुछ सुन के फिर अपने हिसाब से किया, फिर उन्होंने वो करेक्ट किया, ऐसे रोज का ही था ये।
1: अच्छा, आपने फरुखाबाद बाज की गहन शिक्षा ली है, इस बाज की ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको अधिक आकर्षित करती है?
2: देखिए, आजकल तो घराने सब लोग थोड़ा बहुत सब घराना बजाते हैं, ये मैं कहूँगा तबले की खासियत ही ये है कि लास्ट 40-50 साल से हम लोग सारे घराने बजाते हैं। तो सिर्फ फरुखाबाद की जो अगर खासियत मुझे जो पसंद है अगर कहना हो, तो मैं ये कहूँगा कि बोल्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिवली किया जाता है। जो दो बोल हम सोच भी नहीं सकते कि ये साथ में जा सकते हैं, वो फरुखाबाद में कर दिया है।
1: अच्छा,
2: तो ये जो कॉम्बिनेशंस है वो जब सीखते हैं तो ऐसे एक आश्चर्य हो जाते हैं कि ऐसे भी कैसे सोचा होगा उस्तादों ने, पंडितों ने। और जो लिटरेचर है, काव्य है कॉम्पोजिशंस के, वो भी सुन के हम तो सोच ही नहीं पाते कि पुराने लोगों ने कैसे ये सोचा होगा। बहुत मुश्किल है ऐसे काव्य करना तबले के माध्यम से।
1: तो ये विशेषता रही है। आपकी माताजी भारती नानावती बनर्जी स्वयं एक प्रसिद्ध गायिका है, पटियाला घराने की शिष्या है, उनके गायन और संगीत संस्कारों का आपके तबला वादन पे किस तरह का प्रभाव है?
2: देखिए, कोई भी म्यूजिशियन हो, अगर वो गायक हो तो उनको तबला जानना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो तो उनको गाना, तबला, वो सभी जानना है। तो एज अ तबला प्लेयर गाना जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं खुद बहुत अच्छा ख्याल गा लूंगा या कुछ, लेकिन उसका नॉलेज होना, कैसे बंदिश बनाई जाती है ताल के हिसाब से, या राग का क्या मूड होता है, उस हिसाब से फिर आपका बजाना थोड़ा और एक इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा अच्छा बनता है म्यूजिक के साथ। तो बहुत ही ज़रूरी है गाना जानना थोड़ा बहुत।
1: जी, हम आपके शुरू से दौर से, माता पिता से आके अभी आपके एक गुरु जो है शंकर घोष जी, एक महान कलाकार थे, मार्गदर्शक उन आपके रहे हैं, उनका आपके संगीत जीवन में क्या महत्व है या उनका प्रभाव कैसे आप पे पड़ा?
2: मैंने मेरे दोनों दादाजी, मम्मी के और पिताजी के फादर्स, उनको मैं मिला नहीं, मेरे आने के पहले ही वो चल बसे थे। तो पिताजी के जो गुरुजी पंडित शंकर घोष जी थे, उनको ही मैं बचपन से, दादाजी क्या होते वो ही थे मेरे सहन में। तो हम लोग जब जाते थे उनको मिलने, या मेरा कोई भी परफॉर्मेंस हो या कुछ, तो पापा हमेशा उनके पास लेके जाते थे कि पहले उनको सुनाओ। फिर वो ऐसे लोगों के पास ना, आप एक दो घंटे भी आपने बिताए ना, तो आपको सालों का मटेरियल मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, सोचने का। तो वैसे उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, जब भी वो हमारे घर आते थे या हम उनको मिलने जाते थे, तो एक दो चीज कुछ बस ऐसे कुछ सर्किट में उन्होंने स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर दिया, बस अब सालों उस पे आप सोच सकते हैं। ये दृष्टि उनमें थी। और वो मुझे, जब मैं थोड़ा और प्रोफेशनली बजाने लगा और उन्होंने मुझे पहली बार एज अ पब्लिक परफॉर्मेंस सोलो में सुना, तो उन्होंने मुझे एक चीज बहुत बोली जो मुझे एज अ ब्लेसिंग मैं लेता हूँ। उन्होंने मुझे छूट दी कि तुम अपने बंदिशें बनाओ और एंजॉय करो उसको, रोज एक बंदिश बनाओ, ऐसा कहते थे वो।
1: क्योंकि मेरे मीटर से चलो ऐसा नहीं था,
2: नहीं उनका तो बिल्कुल ही नहीं था। और एक स्टेज के बाद, ऑफ कोर्स आपको पहले वो सब अच्छे से डाइजेस्ट करना है, फिर वो कहते थे रोज बनाओ, बनाते बनाते जैसे कोई कवि पहले दिन ही तो मास्टरपीस नहीं लिखते ना।
1: बराबर।
2: तो ऐसे लिखते लिखते लिखते लिखते फिर एक स्टेज आता है जब रोज वो एक मास्टरपीस लिख सकते हैं। तो उनकी अप्रोच भी वैसी थी कि आप बंदिश बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो।
1: मेरा अगला सवाल है कि तबला एक ताल वाद्य नहीं, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, तो आपके जीवन में तबले का असाधारण महत्व रहा है, तबले के बारे में थोड़ा बताइए,
2: यानी कि
1: जैसे
2: आपके
1: लिए,
2: मेरे लिए,
1: हाँ, कि ताल वाद्य नहीं है, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, आपने तबले को कैसे समझा है?
2: ओके, तो तबला मेरे जिंदगी में एक जिंदगी का ही हिस्सा है। मैंने इसको अलग से कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं बचपन से वो ही देख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट। इनफैक्ट पैदा होने के पहले भी सुन रहा हूँ,
1: गर्भ संस्कार ही हुए हैं।
2: एग्जैक्टली
1: जी,
2: तो ये मेरे जिंदगी का हिस्सा ही है। हालांकि मैंने पढ़ाई भी की इंजीनियरिंग वगैरह, मैं स्पोर्ट्स में भी काफी इन्वॉल्व रहता था, क्रिकेट फुटबॉल दोनों, तो दोनों सीजन में एक्टिवली ट्रेनिंग में रहता था, पर हमेशा तबला मेरे लिए सा या सम पे आने जैसा था कि सब कुछ पूरे दिन कर लिया, पढ़ाई, स्कूल, ये वो, फिर तबला लेके बैठता था तो लगता था अब मैं घर आ गया, अब मैं सम पे आ गया, या ये मेरा सा है। और ये अभी मैं एनालाइज करता हूँ, ये ऐसे कॉन्शियसली मैंने कभी सोचा नहीं था।
1: जी, मैं वही आपको प्रश्न अगला पूछने वाला था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तबला एक दोनों अलग क्षेत्र है और दोनों क्षेत्र में आप महारथी है, तो ये कैसे आपने साध्य किया?
2: मुझे ऐसा लगता है कि तबला या म्यूजिक इन जनरल, तबला इन पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें गिनती का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है और कॉम्बिनेशंस बनाने वर्ड्स के साथ भी, वो चीज और कोई भी एनालिटिकल एकेडमिक सब्जेक्ट, मैथ्स हो जाए या कंप्यूटर साइंस हो जाए या इन जनरल साइंस हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, आई कांट से साइंटिफिकली, पर मुझे ऐसा लगता है वो ब्रेन में कहीं वो एक ही जगह से होता है, ये मेरी फीलिंग है। किसी को इंटरेस्ट है तो आप एक्चुअली रिसर्च कर सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्क्स लाइक दैट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कुछ चीजें तबले में मुझे आसान लगती थी एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजें मुझे मैथ्स क्लास में या कंप्यूटर साइंस में आसान लगती थी। अब ये कंप्यूटर या मैथ्स के लिए तबले पे हो रहा है या तबले के लिए मैथ्स या कंप्यूटर पे हुआ, ये मुझे पता नहीं है, पर मैं यही सोचता हूँ कि शायद इसलिए कहते भी है कि बच्चों को म्यूजिक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट वैसे होता है, जो पढ़ाई में भी हेल्प होता है, एट द सेम टाइम पढ़ाई करना भी जरूरी है अगर आपको म्यूजिशियन भी बनना हो तो। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आई एम श्योर कोई साइकियाट्रिस्ट या ब्रेन सर्जन इस पे बेहतर बता पाएंगे।
1: जी, मेरा दूसरा सवाल है, जब अभी ये जेन जी भी सुन रहे हैं हमारा साक्षात्कार, जेन जी अभी अल्टा बीटा गामा जो कुछ अगली पीढ़ी है, तो इनके लिए आधुनिक संगीत है, साथ ही साथ डिजिटल माध्यमों के साथ ये ज्यादा गैजेटेड हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को या ऐसी पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर लेके जाना आपको क्या चुनौतीपूर्ण लगता है?
2: लगता है बिल्कुल, स्पेशली बड़े शहरों में, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम हो गया है। एक सबसे बड़ा चैलेंज जो ये है कि अभी सोशल मीडिया के वजह से अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। कोई भी बच्चा आजकल खाते वक्त ही माँ बाप फोन पकड़ा देते हैं और फिर वो स्वाइप करने लगते हैं, कोई चीज अगर 2 सेकंड भी पसंद ना आए तो नेक्स्ट वीडियो। ये चीज ब्रेन के लिए मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और देयरफॉर अगर ये आपका ब्रेन स्टेट रहा कि आप 2 सेकंड भी कुछ चीज बिल्डअप नहीं होने देंगे, फिर क्लासिकल म्यूजिक के लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है।
1: जी, ड्यूरिंग कोविड या कोविड के बाद एक अलग ट्रेंड चला या चला आ रहा है, जिसका ऑनलाइन या ऑनलाइन माध्यमों के साथ सीखना, डिजिटल माध्यमों के साथ संगीत सीखना या प्रत्यक्ष गुरु के घर जाके उनके फ्रंट बैठ के सीखना, ये जो है क्या आपको लगता है प्रत्यक्ष गुरु के साथ सीखना अच्छा है या आने वाले अभी ये अलग गैजेट आए?
2: देखिए, ऑफ कोर्स गुरु के साथ बैठ के सीखना बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर आप कोई ऐसे जगह पे है जहाँ आप जो सीखना चाहते हैं उनके वो फील्ड के बड़े गुरु नहीं है, या विदेशों में जैसे होता है, तब गलत जगह सीखने से अच्छा है ऑनलाइन सीखना। तो ये इम्पोर्टेंस स्टूडेंट को समझना बहुत ये है, क्योंकि कुछ जगह आप कहीं भी चले गए, थोड़ा ये सिखा दीजिए, गलत, आपका जिंदगी भर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उससे बेहतर है ऑनलाइन अच्छे गुरु के पास सीखना, और अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो तो उससे अच्छा तो कुछ है।
1: आप भी डिजिटल या इसका यूज करते हैं?
2: जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स छोटे शहरों में है या विदेशों में है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं।
1: अच्छा सर, आपकी बहुत समृद्ध परंपरा रही है, पीढ़ी एक, पीढ़ी दो, पीढ़ी तीन, पीढ़ी, ये जो पूरी विरासत है संगीत की उसे आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेवारी आप पे है, आपको क्या लगता है?
2: हाँ बिल्कुल है, हम सारे म्यूजिशियंस की जिम्मेदारी है कि हम अगले जनरेशन को ये जो खजाना है, ये मेरे कर्नाटिक गुरु जी बहुत खूबसूरत चीज कहते हैं कि हम जब रोड से जाते कोई ट्रैफिक से तो आम इंसान जो भी कर रहा है उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि इतना खजाना है हमारे पास, तो वो हमेशा कहते हैं कि तुम सोचो तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास ये खजाना है, हजारों करोड़ों लोगों में नहीं है। तो ये खजाना ऐसा खजाना है कि आप बांटने पे बढ़ेगा, तो आप जितना बांटते हैं सिखाते हैं और आपको भी नई चीजें दिमाग में आती है, इसलिए मैं सिखाना भी बहुत पसंद करता हूँ। कि आज भी जैसे हम वर्कशॉप कर रहे थे तो और चीजें सूझ रही थी, आइडियाज आ रहे थे, तो ये इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। और एक चीज पिताजी कहते थे कि सीखने का साइकिल तभी कंप्लीट होता है जब आप सिखाना चालू करते हैं, तब वो साइकिल पूरा होता है।
1: जी, मेरा एक आखिरी सवाल, रेडियो मन भावन के श्रोता भी सुन रहे हैं, हमारे युवा भी सुन रहे हैं, आप जो तबला है या भारतीय शास्त्रीय संगीत जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए तबले में क्या उन्होंने पहले सुनना चाहिए, विशेष कुछ रचनाएं हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: मैं पहले कहूंगा कि आप ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, पहले उसका टेस्ट डेवलप कीजिए। ये एक्चुअली सिर्फ तबला नहीं, कोई भी म्यूजिक फॉर्म हो, पहले आप ये मैं खाने का एग्जांपल देता हूँ हमेशा, कि आप अगर कोई नए शहर में गए जहाँ आप नया कुछ ट्राई कर रहे जो आपने कभी नाम भी ना सुना हो, कोई आइडिया नहीं आपको, तभी आप टेस्ट करें बिना क्या आप जाके शेफ के पास पूछते हैं कि क्या डाला है, कितना नमक मसाला, ये नहीं करते हम लोग। हम पहले टेस्ट डेवलप करते, दो तीन बार खाए, अरे ये बढ़िया है, फिर हम कोशिश करते हैं कि अच्छा इसका रेसिपी क्या है, कैसे क्या करना है। वैसे ही म्यूजिक में आप पहले बस सुनिए, कुछ समझने की जरूरत नहीं, अच्छे कलाकार इतने लेजेंड्स है, अभी एडवांटेज है यूट्यूब का, आप सारे लेजेंड्स को सुन पाते, आप टेस्ट डेवलप कीजिए, रेसिपी खुद ब खुद रिवील हो जाएगी।
1: जी, जैसे हमारे खानदेश रीजन का हम यदि विचार करें तो तबले की ओर बच्चियां सीखने के लिए नहीं जाती है, क्या है इसमें करियर का?
2: ये बस एक क्या कहूँ, स्टिग्मा या स्टीरियोटाइप हो गया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑफ कोर्स फीमेल्स,
1: आप लड़की हो तबला नहीं सीखना,
2: बिल्कुल सीख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक सोशल स्टीरियोटाइप हो गया है और कुछ फर्क नहीं है इसमें। और कितने अच्छे फीमेल आर्टिस्ट है भी ऑलरेडी है।
1: सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे रेडियो के श्रोताओं को समापन की ओर लेते जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है, तबला सीखने की उम्र क्या है? जैसे आप तो गर्भ संस्कार से ही तबला और संगीत से जुड़े हैं, लेकिन एक सही उम्र क्या है?
2: पहली सांस से लास्ट सांस तक आप कभी भी सीख सकते हैं।
1: क्या बात है,
2: कोई उम्र नहीं है।
1: क्या संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी वहां उसमें होना चाहिए। इसी के साथ रेडियो मन भावन के आप स्टूडियो में आए, आपका बहुमूल्य समय यहाँ व्यतीत किया, हमारे श्रोताओं को जो पढ़ने वाले प्रश्न थे वो पूछने की चेष्टा मैंने की, आपका बहुत बहुत आभार हमारे पूरे केसी सोसाइटी की ओर से और रेडियो मन भावन की संपूर्ण टीम की ओर से, धन्यवाद।